एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ बढ़िया आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 20वीं तिथि तदनुसार 10 मई सन 2026 है। इस समय प्रातः के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: FM बैंड के 103.4 MHz पर आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले, और इसके बाद विविध भारती के कार्यक्रम रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री

की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होंगी। चुभन धातु में नहीं वरन बेड़ियों में होती है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 184। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें का भाग 8। कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग अनुजा जोकरकर, तबले पर संगत दी है यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनव ने। इस कार्यक्रम का निवेदन किया ममता सिंह ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर। हम है राही प्यार के और उसके बाद सुनिए 8:00 समाचार प्रभात। त्रिवेणी कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2:00। आलेख और स्वर शेफाली कपूर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित होगा संगीतकार पंकज मलिक पर। इस कार्यक्रम को पुनः सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। आज सुनिए विविधा कार्यक्रम दिन में 11:00 और दिन में 12:00 हिंदी में समाचार।

दिन में 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल और दिन में 1 बजे तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के साथ। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और आपको भी हमारी इबारत का इंतजार जरूर होगा, तो जुड़िएगा इस कार्यक्रम में फेसबुक कमेंट्स द्वारा। दोपहर 2:15 पर सुनिए दोपहर के समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत यानी कि आपके द्वारा भेजे गए खतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज दिन में 3 बजे। आज दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद पोस्टमैन का भाग 2। अनुवाद हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम, निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय 4:00। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर और यह कार्यक्रम चलेगा शाम 6:30 तक, लेकिन बीच में होंगे 6 बजे हिंदी में समाचार। झरोखा कार्यक्रम झरोखा आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें आपको दी जाएगी जानकारी शेष कार्यक्रमों की। संध्या रंजन कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:35 और शाम 7 बजे विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद से। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज बांसुरी वादक पारसनाथ। 7:45 होगा इस कार्यक्रम का समय। हवा महल के अंतर्गत सुनिए हास्य नाटिका यात्रा प्यारी लाल की, लेखन कल्पनाथ सिंह, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे और छाया गीत कार्यक्रम का समय होगा रात 10 बजे, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम होगा रात 10:30 और रात 11 बजे सुनिए विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब श्री रामचरित मानस गान का भाग 184 प्रस्तुत है।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते,

दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कल्पना जी, आज की इस कड़ी में हमें बताइए सबसे पहले कि बंदिशें तैयार करने में विषयों का चुनाव किस तरह से किया जाता है और ज़्यादातर किन भाषाओं में बंदिशें तैयार की जाती हैं?
2: जी, भाषा तो अक्सर हिंदी, अवधी, ब्रिज बोली में अधिकतर पाई जाती है। कुछ कुछ राजस्थानी, बिहारी और मराठी भाषा में भी कई बंदिशें बनाई, पंजाबी में बहुत सारी बंदिशें बनाई गई। तो उस

0: स्थान का भी असर होता है बोली पर,
1: जी
0: तो भाषा बोली भी अलग अलग थोड़ी हर एक कलाकार के आसपास के वातावरण के हिसाब से बदल जाती है। और उसके साथ साथ विषय जो है वो भक्ति श्रृंगार प्रकृति से संबंधित
1: जी
0: वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, उत्सवों का वर्णन और गायन वादन में जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उनके बारे में भी कई बंदिशें बनी हुई हैं।
1: जी
0: तो ऐसे हर कलाकार के बंदिश बनाते समय जो आगरा जयपुर घराने की गायकी
1: जी
0: आपके गायन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, आपने भी कई रचनाओं का निर्माण किया हुआ है।
1: जी
0: तो आज कुमुदिनी जी ने बनाई हुई राग बिलास खानी तोड़ी में मैं एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तीन ताल में बंधी हुई ये बंदिश है।
1: जी जी
0: कैसे समझाऊं, बिलास खानी तोड़ी इस नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि ये राग तोड़ी का ही प्रकार होगा। इसका थाट जो है भैरवी थाट है क्योंकि इसमें अधिकतर स्वर भैरवी के ही लगते हैं। इसके आरोह में मध्यम और अवरोह में पंचम वर्जित है, इसलिए इसकी जाति षाढ़व षाढ़व है। तोड़ी अंग को ध्यान में रखकर मेंड के प्रयोग से ही यह राग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और शुद्ध मध्यम के प्रयोग से भूपाल तोड़ी से भिन्न हो जाता है। और धैवत प्रमुख स्वर या वादी स्वर हम कह सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर राग है, प्रातःकालीन राग है। इसका चलन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।
1: जी
0: इसके आरोह में मनी वर्ज है और अवरोह में पंचम वर्जित है। इसका चलन वक्र रूप से जाता है जो मैं अब आपको बताती हूँ।

0: वाह, कैसे समझाऊं मानत नहीं मोरा जियरवा। बड़ी सुंदर रचना थी और बड़े सुंदर अंदाज में आपने प्रस्तुत किया, यूं कहें कि मोहित कर लिया अपने गायन से। अब बताइए हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगे आप?
1: अब कुमुदिनी जी की आवाज़ में उन्हीं की बनाई बंदिश राग भैरव में प्रस्तुत करते हैं। ताल तीन ताल एवं शब्द है शंभो गिरिजापति।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह, गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत स्वीकार कीजिए। नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं डॉक्टर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है पंकज मलिक ने, संगीत से सजाया है पंकज मलिक ने और गीत के बोल लिखे हैं आरजू लखनवी, AH शोर ने।

आज महान गायक और संगीत निर्देशक पंकज मलिक की जयंती पर उनके कुछ सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आज उनकी मधुर धुनों को याद करते हुए जिन्होंने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी, तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत कपाल कुंडला से, आवाज़ और संगीत पंकज मलिक का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मंजिल फिल्म का ये गीत, आवाज़ पंकज मलिक की, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है RC बारोल ने।

आरसी बोराल का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना और अब भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक वक्त है एक अंतराल का।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं केएल सहगल का गाया ये गीत। इस गीत की रचना की है पंडित भूषण ने और संगीत दिया है पंकज मलिक ने। फिल्म का नाम अमर सहगल।

आप सुन रहे हैं वो भूले बिसरे गाने जिन्हें आप कम ही सुन पाते हैं। ये गीत आपके लिए विविध भारती द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। तो चलिए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है स्टार। इस गीत को गाया है पंकज मलिक ने और संगीत है सुरेश चौधरी का।

और लीजिए अब सुनिए पंकज मलिक और साथियों का गाया ये गीत, जिसे लिखा है पंडित भूषण ने। इस गीत को संगीत से सजाया है पंकज मलिक ने। फिल्म का नाम यात्रिक।

और आइए बापू सुनवाते हैं सुरैया की आवाज में प्यार की जीत इस फिल्म का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, हुस्नलाल भगतराम का संगीत।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में स्वागत है आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का। मैं हूं उषा, स्वीकार कीजिए नमस्कार। आज का सुविचार, शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता शांति ही है, महात्मा गांधी। और अब एक नज़र आज के इतिहास पर। वर्ष 1857 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ से अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। वर्ष 1503 में आज ही के दिन कोलंबस ने कैमेन द्वीप की खोज की। वर्ष 1993 में आज ही के दिन संतोष यादव लगातार दूसरी बार एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी। वर्ष 1994 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में रा

राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई। आज जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति 10 मई वर्ष 1998 को विचित्र नारायण शर्मा का जन्म हुआ। आप जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे। 10 मई वर्ष 1980 को योगेंद्र सिंह यादव का जन्म हुआ। आप परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक थे। और अभी एक नज़र आज प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथि पर। 10 मई वर्ष 2002 को कैफी आजमी फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर का निधन हुआ था। 10 मई वर्ष 2010 को मैक मोहन हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ था।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और अब एक नजर स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। रोहतास जिला में शेरशाह सूरी महोत्सव 2026 पर सासाराम में 21 एवं 22 मई को कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महोत्सव को लेकर रील प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में सफल अभ्यर्थियों को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी श्री आशीष रंजन ने बताया कि जिला पदाधिकारी महोदया के निर्देश पर जिला प्रशासन रोहतास की ओर से रील प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रील शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व व कृतित्व विषय पर बनना होगा। रील की अवधि 30 सेकंड से 1.5 मिनट तक रहेगी। रील शेरशाह सूरी महोत्सव @gmail.com। ईमेल आईडी एक बार पुनः नोट कर लें, शेरशाह सूरी महोत्सव @gmail.com। ईमेल पर अपने नाम, पता एवं मोबाइल नंबर के साथ भेजना है। रील भेजने की अंतिम तिथि 10 मई 2026 तक निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दी गई है। रील को गूगल ड्राइव पर भी अपलोड कर उसका लिंक ईमेल पर भेज सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार ₹5,000, द्वितीय पुरस्कार ₹3,000 एवं तृतीय पुरस्कार ₹2,000 दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। DPRO रोहतास।

बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 के तहत मीडिया कर्मियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के प्रावधान, शर्तों एवं पात्रता आदि की विस्तृत जानकारी एवं विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त नियमावली के अनुरूप ही सभी वांछित कागजात के साथ आवेदन करेंगे। विहित प्रपत्र में पूर्ण रूपेण भरा हुआ आवेदन संबंधित जिलों को जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के कार्यालय में 27 मई 2026 को अपराह्न 4 बजे तक जमा किया जा सकता है।

0: को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सासाराम बिहार मौसम सेवा केंद्र ने रोहतास जिले में 9 मई से 10 मई तक सुबह 8 बजे तक मेघ गर्जन, तेज हवा और ठंड का को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्व चेतावनी में जिले के कई प्रखंडों को अति भीषण श्रेणी में रखा गया है।

कैमूर में मगध विश्वविद्यालय से जारी किए गए 310 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शिक्षकों की सूची जारी करते हुए सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

अभी आपको हमने सुनवाया श्रेया घोषाल और केके की आवाज़ में फिल्म साया का गीत, संगीत था अनु मलिक का और गीतकार कुमकुम सहगल।

और अब एक नज़र मौसम पूर्वानुमान पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है, वर्षा आज 12 मिलीमीटर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 65%, न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 25% और हवा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। पवन दिशा 80 डिग्री और क्लाउड कवर ओक्टा 5। आंधी और बिजली तूफान आदि तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी है मौसम विभाग के अनुसार।

हमने ये गीत आपको सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी है, राज तिलक, बंगाल की बागडोर शुभेंदु के हाथ, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई शीर्ष नेता समारोह में मौजूद रहे, 6 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री समेत पद गोपनीयता की शपथ ली, 2 मंत्री उत्तर बंगाल, 3 मंत्री दक्षिण बंगाल से हैं, कोलकाता से कोई नहीं। शुभेंदु ने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। हिंदुस्तान की ही सुर्खी है, विजय की ताजपोशी तय, वीसी के साथ आए, 2 और विधायकों के समर्थन से बहुमत मिला।

दैनिक जागरण की सुर्खी है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन एन नौसेना प्रमुख नियुक्त। विजय ने राज्यपाल को सौंपा 120 विधायकों का समर्थन पत्र। समर्थन पत्र देते हुए तस्वीर के साथ ये सुर्खी है दैनिक जागरण की। टीवी के प्रमुख विजय ने शनिवार को लोकभवन चेन्नई में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मां बोली बेटा आरजी कर पीड़िता को न्याय दो। शुभेंदु ने पहली बैठक ही लॉ एंड ऑर्डर पर की। शुभेंदु की मां गायत्री अधिकारी ने कहा, बेटे पर गर्व है। पीएम मोदी ने जनता को दंडवत प्रणाम किया, कहा रविंद्र जयंती पर पश्चिम बंगाल सरकार का शपथ ग्रहण एक सुखद संयोग है। वहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है, विजयपथ नतीजे के 5 दिन बाद बहुमत, शपथ आज। वीसी के आईयूएमएल के साथ टीवी के 120 पर। प्रभात खबर अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है, राज्य के 4000 पुलों की सेहत जांचेंगे अभियंता। पथ निर्माण विभाग के सचिव ने 72 घंटे में टास्क पूरा करने को कहा, पोर्टल पर अपलोड होगी रिपोर्ट। वहीं प्रभात खबर की एक और सुर्खी है, बिहार पुलिस में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15,821 पदों पर होगी बहाली, 1 जून से दानापुर में रैली।

कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में आज इतना ही। अब दीजिए इजाजत उषा को। नमस्ते। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। था कि 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।

0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े।

0: अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
2: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
4: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
2: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम

नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की यह खबर चिंतित

0: सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FMN के 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम देशभक्ति संगीत।

कार्यक्रम देशभक्ति संगीत के अंतर्गत आपने सुना केसरी फिल्म का ये गीत, बी पराग की आवाज़ में आरको का संगीत और मनोज मंत्री की रचना। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी

0: फिल्म गदर 2, विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर, शहनाज अख्तर की आवाज़ें आप सुन रहे थे। गीतकार सईद कादरी और संगीत दिया था मिथुन ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवारी फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला और सदाबहार ताजपुर मोरबा से भाईकारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार बैरागी।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर

0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

फिल्म रंग का ये गीत, आवाज़ थी कुमार शानू और अलका याग्निक की, नदीम श्रवण का संगीत, समीर का लिखा गीत और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना परवीन, अरहान बाबू, हमजा बाबू, तो तैमूर बाबू, हुमैरा नाज, सुमेरा नाज, अभिया नाज, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, कोकिलवारा, औराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल से, नुजर जहाँ नाज, कांति निकेतन राजनगर से, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, गढ़नोखा लालगंज से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान, आर के सिंह चौहान, और थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुल निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज़।

फिल्म बीटा का ये गीत उदित नारायण और अनुराधा पोरवाल की युगल आवाज़ में आप सुन रहे थे। संगीत दिया था आनंद मिलन ने और गीतकार थे समीर। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की, सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मत

0: ज्यादा पानी होगा उसके घर की जांच तक हो जाएगी। पानी की ये त्रासदी हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन जाए। सोचिए, पानी की बर्बादी से ऐसा समय भी आ सकता है जब चारों ओर पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। तब यह भी सोचना पड़ जाएगा कि कहीं मानव सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त न हो जाए। हालांकि मेरा अस्तित्व खतरे में है, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। कोई तो होगा जो मुझे बचाने का, मुझे सहेजने का प्रयास करेगा।
1: सावन की प्रतीक्षा में सूखी हुई डाली पर बैठा हुआ एक पंछी बस दे

0: जाने।
1: इस आपदा से कैसे निपटा जाए, ये बड़ा कठिन प्रश्न है हम सभी के सामने। लेकिन कुछ बातों पर ध्यान तो देना ही होगा, जैसे गाड़ी को हम बाल्टी में पानी लेकर भी धो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पानी की टंकी भरकर पानी गिरते रहता है, तो ऐसे में हम अलार्म लगाकर टंकी को ओवरफ्लो होने से रोक सकते हैं।
2: दिल नहीं दिमाग लगाओ, पानी की हर बूंद बचाओ।
3: अच्छा,
2: अपने ही वंशजों के खातिर समय से ही कदम उठाओ। नहीं करो तुम मनमानी, मिल सकता है सबको पानी।
3: क्या बात है,
1: अब सुनो तुम मेरी बात। तीन बातों को रखना याद। पहली बात, टंकी को तुम खुला न छोड़ो, शावर से तुम नाता तोड़ो, कम पानी से तुम नहाओ, बूंद बूंद पानी बचाओ। अब सुनो दूसरी बात, उपयोग किया गया पानी करो इकट्ठा जगह एक, सीधे धरती में वो जाए ऐसे करो उपाय अनेक, घर घर में एक पेड़ लगाए, बारिश का पानी बचाए, बोरिंग का पानी कभी सूखने ना पाए। अब सुनो तुम तीसरी बात, मिलकर खोदो गड्ढा एक, उसमें डालो कंकड़ पत्थर और रेत, इससे बनेगी छन्नियां अनेक, पृथ्वी का जल स्तर बढ़ेगा, कोई न फिर प्यासा मरेगा। जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियां, इन सभी को पुनर्जीवित हम करें। साफ पानी हो भरपूर इनमें, ऐसी कोशिश हर एक करे।
2: हम सब तो समझ गए, अब आप सबकी बारी है, पानी की हर बूंद बचे उसमें ही समझदारी है, पानी बचे धरती बचे, अब यह आपकी जिम्मेदारी है।

0: क्या बात।
1: क्यों ना हम अपनी कोशिश से पानी रोज बचाएं, छोटी तरकीबें अपनाकर जल स्तर को उठाएं। जीवन फले फूलेगा, अपना भविष्य भी मुस्काएगा, धरती माँ के उपकारों का कर्ज अदा हो जाएगा।
0: जल बचाओ, जीवन बचाओ, इस धरा को स्वर्ग बनाओ।
1: जल बचाओ, जीवन बचाओ, इस धरा को स्वर्ग बनाओ। अभी हम सुन रहे थे लघु नाटक। अब आइए सुनते हैं आपकी प्यारी प्यारी कविताएं और गीत वगैरह। सुनाने के लिए तैयार हैं ना आप सब?
2: जी।
1: और बताइए आपका क्या नाम है?
3: निशा राज।
1: क्या सुनाएगा निशा?
3: कविता
1: सुनाइए।
3: है सकरमान यही हम कुछ कर दिखलाएंगे, मरने वाले दुनिया में अमरों में खिलाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है जिन पे ना किसी की छाया, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार के बैठे हैं, जो उम्मीद मार के बैठे हैं, उनके बुझे दिमाग में नए उत्साह जगाएंगे। हम उन बीरों बच्चे सच्चे हैं, हम उनका नाम खिलाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे,
1: हम जग में नाम कमाएंगे। बहुत अच्छी कविता थी निशा की, बहुत अच्छा लगा। और आपका क्या नाम है?
4: सूर्यकांत।
1: क्या सुनाइएगा?
4: गीत
1: सुनाइए।

0: इस गीत के बाद लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ संदेश।
1: कार्यक्रम के इस भाग में पुनः आप सभी का स्वागत है।
0: बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि पिता और माता इस दुनिया में हमारे लिए भगवान के ही रूप होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अपना पूरा जीवन हमारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं।
2: हाँ दीदी, मेरी माँ रोज़ बड़े प्यार से सुबह मुझे उठाती है, नाश्ता बनाती है मेरे लिए। मेरी माँ टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है और हमेशा मेरे पसंद नापसंद का ध्यान रखती है।
3: और दीदी, मेरी माँ तो मेरे प्रोजेक्ट और इसमें भी मेरी मदद करती है, मेरी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है। सच में दीदी, मुझे आज तक पता नहीं चल पाया जो बात मेरे मन में चल रही होती है वो मेरी माँ को कैसे पता चल जाता है।
0: बिल्कुल बच्चों, माँ होती ही ऐसी है। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। अगर बच्चे पर कोई कष्ट आने वाला होता है तो माँ सबसे पहले आगे आती है। बच्चों, माँ अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार तो करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है तो माँ एक गुरु की तरह उसे पास बुलाकर समझाती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे मार भी लगाती है। बच्चों, इस धरती पर माँ हमारा पहला प्यार, पहली शिक्षिका होती है और सबसे पहली दोस्त भी होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ नहीं जानते हैं और कुछ भी करने के लायक नहीं होते हैं। वो माँ ही तो होती है जो हमें अपनी गोद में पालती है। वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम दुनिया को समझ सकें और

0: ज्यादा प्यार तो करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, तो माँ एक गुरु की तरह उसे पास बुलाकर समझाती है और जरूरत पड़ने पर उसे मार भी लगाती है। बच्चों, इस धरती पर माँ हमारा पहला प्यार, पहली शिक्षिका होती है और सबसे पहली दोस्त भी होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ नहीं जानते हैं और कुछ भी करने के लायक नहीं होते हैं। वो माँ ही तो होती है जो हमें अपनी गोद में पालती है। वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम दुनिया को समझ सकें और सब कुछ कर सकें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती। कभी कभी तो बच्चे माँ की समझाई गई बात को भी बुरा मान लेते हैं। माँ तो यदि आपको डांटती है या कुछ करने के लिए कहती है, तो इसमें भी आपकी भलाई ही छुपी होती है। लेकिन यही रोक टोक जब बच्चे को समझ नहीं आती, तब कभी कभी बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था प्रिया के साथ।
1: क्या हुआ था दीदी प्रिया के साथ?
0: हाँ, प्रिया भी ऐसे ही गलतफहमी का शिकार हो गई थी।
1: आइए जानते हैं उसकी गलतफहमियों के बारे में और यह भी कि किस तरह उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। मात्र 13 साल की छोटी सी उम्र थी प्रिया की। प्रिया को अपनी माँ पर बड़ा गुस्सा आता,
0: क्योंकि उसकी माँ हर पल उसे यही समझाती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हर बात पर रोक टोक, क्योंकि माँ तो बेटी का भला चाहती है ना। पर प्रिया को यह बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय माँ ने फिर प्रिया को डांट दिया। प्रिया को तो बहुत बुरा लग गया, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने घर छोड़ने का निर्णय किया। बस वो घर छोड़कर चली गई। घर के बाहर निकलकर वो चलते चलते अपने मकान से बाहर गई, अपनी गली से बाहर गई, मेन रास्ते पर आ गई और भी चलते चलते वो मार्केट तक आ गई। वहां उसने क्या देखा कि बहुत सारी दुकानें थी, कोई कपड़ों की दुकान, कोई खाने पीने की दुकान, तो कहीं पे कोई ठेला लगा हुआ था, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, और वो सब कुछ देख रही थी और मन में सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। माँ ने मुझे ऐसा कहा ही क्यों? और बस उसका मन तो रो ही रहा था, पर माँ को याद कर रहा था। लेकिन प्रिया गुस्से में थी, उसे लगता था कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे डांटना नहीं चाहिए। उसे लगता था कि घर छोड़कर उसने सही फैसला किया है और अब चलते चलते खाने का समय हो गया और उसे लगी बड़ी जोर की भूख। और उसने देखा कि ठीक उसके सामने एक गोलगप्पे वाले की दुकान थी और उसके बगल में एक आइसक्रीम की दुकान थी और उसके बगल में एक सैंडविच की भी दुकान थी, पर उसके पास तो पैसे थे नहीं, कैसे खाती? भूखी थी बेचारी, खड़े खड़े देख रही थी, कभी गोलगप्पा, कभी आलू पराठा, तो कभी आइसक्रीम, खा कुछ नहीं सकती थी वो, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। बस वो देख रही थी दुकानों की तरफ कि पीछे से एक हाथ आया और हाथ में एक प्लेट थी और प्लेट में था खुशबूदार आलू का पराठा। उसने देखा, लेने जा रही थी पर रुक गई और फिर तभी एक आवाज आई, खा लो बेटा। उसने सोचा, ये आवाज तो सुनी हुई है। उसने मुड़कर देखा तो क्या देखा? नहीं, उसकी माँ नहीं थी वो, उसके सबसे प्रिय सखी के दादाजी थे वो। दादाजी ने कहा, खा लो बेटा, खाने को देख रही हो तो फिर खा ही लो, भूख लगी होगी तुम्हें। और प्रिया ने प्लेट प्यार से ली और खा ली। और खाते खाते दादाजी ने उससे सवाल किया कि तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं बोली। खा लेने के बाद उसने दादाजी को पूरी कहानी बताई और कहा, देखो ना, माँ मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसीलिए मैं घर छोड़कर निकल आई। दादाजी ने उसे समझाया, यह तो बुरी बात है, ऐसे घर थोड़ी न छोड़ते हैं। लेकिन प्रिया टस से मस नहीं हुई। उसने कहा, नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, माँ मुझसे प्यार नहीं करती, आप तो

0: इतने अच्छे हो, आप मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मुझे खाना खिलाया, दादाजी ने कहा। ओहो, ये आजकल के बच्चे भी ना। बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हें आलू पराठा खिलाया और तुम्हें मैं इतना अच्छा लगने लगा। अब तुम अपनी माँ के बारे में सोचो, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है। सुबह सुबह उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती है, तुम्हें स्कूल भेजती है, स्कूल का सारा होमवर्क कराती है, स्कूल से आने के बाद खाना खिलाती है और तुम्हें प्यार से लोरी गाकर सुनाती भी होगी, हाँ या ना। अब प्रिया तो सोचती रह गई कि हाँ, दादाजी तो सही कह रहे हैं। फिर उसने दादाजी की बात मानते हुए घर जाने का फैसला किया। अब प्रिया घर जा रही थी, फिर वैसे ही चलते चलते, और रास्ते में सोच रही थी, दादाजी ने जो कुछ कहा वो सब सच था और मैंने जो कुछ भी सोचा वो सब गलत था। मेरी माँ तो मुझसे प्यार करती है और मैंने माँ को कितना बुरा भला कहा, उनकी बात भी नहीं मानी, मैं ही बुरी हूँ। और सोचते सोचते वो रोने लग गई। चलते चलते उसका घर आ गया। उसने घंटी बजाई और दरवाजा खोलते ही माँ ने कहा, मेरी बच्ची, और कहते कहते उसे गले से लगा लिया और कहा, कहाँ थे तुम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ। फिर उसने सोचा, माँ कितनी अच्छी है, मैं ही माँ की बात नहीं मानती, माँ ने मुझसे जो कुछ भी कहा मेरी रक्षा करने के लिए ही कहा था। सोचते सोचते प्रिया की आंखों में आंसू भर आए, उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। अब उसने निश्चय किया कि माँ के बारे में कभी बुरा भला नहीं सोचूंगी और मैं माँ की हर बात मानूंगी।
1: माँ ने ही तो उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, पढ़ना लिखना सिखाया था। माँ की डांट तो फूलों की तरह थी। मेरी माँ तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मेरी प्यारी माँ।

0: बच्चों, 16 मई को हम एक खास दिवस के रूप में मनाते हैं और वह दिवस है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है या युद्ध की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग या जनसंख्या वृद्धि, वह किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये सारी समस्याएं कहीं न कहीं एक दूसरे देश या पूरे विश्व से जुड़ी हुई हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारा देश समूचा संसार है और देशवासी सिर्फ एक इंसान है, किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के वे नागरिक हैं। हमें अपने देश के अलावा दूसरे देश की धरती को भी उतना ही प्यार करना चाहिए। सभी देश शांति के साथ एक दूसरे से मिलकर रहें, इसी भावना को लेकर प्रत्येक वर्ष 16 मई को शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सभी शांति पसंद देश यह चिंतन करने लगे हैं कि सभी राष्ट्रों का एक विश्व संघ बन जाए ताकि युद्ध के परिणामों से बचा जा सके। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाने का भी यही उद्देश्य है। और बच्चों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम अपने श्रोता बच्चों को कार्यक्रम का पता बता दें। तो बच्चों, कार्यक्रम संबंधी अपने विचारों को, अपनी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए नोट कर ले कार्यक्रम का पता। कार्यक्रम का पता है
1: कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का रहेगा हमें बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाजत। जय हिंद बच्चों।
2: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर, एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

FM की 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब सुनिए भोजपुरी एल्बम लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सौरव सिंगार एल्बम का गीत आपने सुना, मोंटी बाबा की आवाज़ में गीतकार मानक परदेसी, मीनू कुमारी संगीतकार। और अब आपको सुनवा रहे हैं सैया छोड़ काहे गईला एल्बम का गीत आयुष प्रकाश की आवाज़ में, मानक परदेसी गीतकार और संगीतकार हैं मीनू कुमारी।

और अब आपको सुनवा रहे हैं प्रवीण को मिश्रा बुलबुल की आवाज़ में। ये गीत प्रवीण मिश्रा बुलबुल का लिखा हुआ, संगीत दिया है मनोज बंटी ने। समैया केहू के ना छोड़ ले बा एल्बम का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम्स पर आधारित कार्यक्रम लो रसधार एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रिले।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: बहुत दिनों बाद आज अमरकांत जी इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और अमर जी कुछ खास रिकॉर्डिंग्स आज हमने अपने श्रोताओं के लिए चुनी है
1: जी।
0: क्योंकि मुझे याद है पिछली विविधा में हम कह रहे थे कि एक विविधा खत्म होती है और हमें फिक्र हो जाती है कि अगले शुक्रवार को हम अपने श्रोताओं को क्या सुनाएंगे,
1: क्या उनके लिए ऐसा खास लाएंगे कि जिसे सुनकर वो कहें वाह क्या खजाना है विविध भारती का।
0: जी, तो कौन से हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आज के इस अंक में हम याद करेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं अमर जी।
1: देखिए ऐसा है मनीषा जी कि हमारे श्रोता जो लगातार विविधा सुनते रहे हैं और सुनते हैं वो अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कलाकार का जिक्र इस कार्यक्रम में करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है उस दिन उसका जिक्र करने की।
0: बिल्कुल।
1: तो आज जिन तीन कलाकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके पीछे भी कोई कारण होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले तो मैं नाम बता दूं कि वो तीन कलाकार कौन से हैं।
0: बिल्कुल।
1: अदाकारा रीमा लागू, अपने जमाने के चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले सशक्त कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, सज्जन कुमार
0: जी,
1: और एक बहुत ही नामी गिरामी किंग मेकर कह सकते हैं,
0: मैं नाम बता रही हूँ आप, और वो है मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा।
1: बिल्कुल ठीक
0: तो कहा। आज विविधा में ये तीन कलाकार हैं और इनके अलग अलग रंगों से सजी है आज की महफिल
1: जी।
0: सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे?
1: सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे एक गाना भी अगर हम सुनवा सकें।
0: जी जी।
1: रीमा लागू जी का।
0: बिल्कुल। रीमा जी चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत मशहूर हुई, खास तौर पर माँ का चरित्र बहुत निभाया उन्होंने फिल्मों
1: जी। लेकिन रीमा जी के फेमस होने के पीछे टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ था
0: जी।
1: दो ऐसे सीरियल थे जिनके कारण रीमा जी ने अपने मतलब एक्टिंग की जितनी भी उनकी खूबियां थी वो सारी की सारी दिखाई। एक सीरियल था श्रीमान श्रीमती और एक सीरियल था तू तू मैं मैं। श्रीमान श्रीमती में ये पत्नी बनी थी और तू तू मैं मैं में ये सास बनी थी,
0: और वो बनी थी सचिन जी की धर्मपत्नी जो है सुप्रिया
1: पिलगांवकर,
0: पिलगांवकर उनकी सास, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने उसमें प्ले किया था।
1: अब यहाँ मैं ये बता दूं मनीषा जी कि रीमा लागू जी का जो नाम था वो पहले था नयन भादभड़े
0: जी।
1: 21 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम उम्र यानी 18 मई 2017 को रीमा जी ने इस संसार से अलविदा कह दिया,
0: मात्र 59 वर्ष की आयु
1: जी।
0: बहुत कम उम्र में वो चली गई। मराठी और हिंदी सिनेमा की तो अभिनेत्री थी ही, थिएटर भी उन्होंने बहुत किया था।
1: हम ये भी बता दें आपको दोस्तों कि रीमा जी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम करती रही हैं
0: जी।
1: मराठी में इन्होंने काम किया, फिर मराठी फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, इस तरह से इनकी जर्नी चलती रही। और जब सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन फिल्म प्लान करी तो उस दौरान मनीषा जी हुआ क्या कि वो फिल्म को पूरा एक नया लुक दे रहे थे सूरज बड़जात्या
0: जी।
1: वो आपको तो पता ही है कि नदिया के पार का रीमेक था
0: जी। हाँ, एक अर्बन नदिया के पार कह लीजिए
1: जी जी। और उसमें इनकी कोशिश थी सूरज बड़जात्या के कि सब कुछ एकदम मॉडर्न हो, पिक्चर भी पूरी ग्लॉसी ग्लॉसी थी और सब बड़े खूबसूरत चेहरे, बहुत ही
0: अच्छी स्टार कास्ट जबरदस्त जी।
1: अब ऐसे में इनको एक ऐसी माँ चाहिए थी जो एक अभिजात्य परिवार की एक कमांडिंग
0: मदर हो। मैं कहूँ तो एक ग्लैमरस माँ,
1: ये बिल्कुल सही शब्द आपने पकड़ा
0: जी।
1: और वो ग्लैमरस माँ ढूंढते ढूंढते इनकी नजर रीमा लागू पे पड़ी

0: और फिर वहीं अटक गई।
1: और कितनी हसीन लगी हैं उस फिल्म में,
0: बिल्कुल
1: वात्सल्य की मूर्ति रीमा लागू और उनके पीछे वो छुप के माधुरी दीक्षित का कहना, माई री माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। अमर जी आपने कहा था गीत सुनाए,
0: बिल्कुल तो, गाना सुनते हैं उसके बाद बातचीत सुने।

0: मनीषा जी, गाना तो आपने सुनवा दिया, लेकिन आपने पहले ये भी कहा था कि आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग है इनकी।
1: बिल्कुल, और रीमा जी की एक बहुत प्यारी बातचीत हमारे पास है।
0: तो फिर देर किस बात की?
1: बिल्कुल, बातचीत उनसे की थी यूनुस खान ने। तो उस रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं और याद करते हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू।
2: रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
3: शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। एक्चुअली रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है, तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। व्हेन आई वाज अ किड, वो उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी।
2: जी जी।
3: मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था, तो
2: अच्छा।
3: कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिना का गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था
2: जी,
3: जो शायद अभी भी आता होगा। तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के लिए मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी।
2: ये जो रेडियो का दौर है, ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है।
3: एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है, जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। और भी कॉम्पिटिशन भी है, फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है। ये फ्रेंड बन गया है रेडियो आज,
2: यानी बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था?
3: वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज फ्रॉम थिएटर, उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो उनके साथ मैं जाया करती थी, तो आई थिंक वहाँ से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज।
2: घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे?
3: हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज्यादा मिले हैं। फिल्में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया।
2: बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है?
3: जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं करती थी, काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई, तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ।
2: कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स, वो सारा माहौल कैसा था?
3: एक्चुअली इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, यू नो, एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है
2: जी,
3: यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि उसमें आप बनते हैं,
2: ग्रो करते हैं।

0: एज एन आर्टिस्ट, और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है फिर।
1: खाने पीने की कोई सुध नहीं, और वो
0: हाँ, एक
1: जो
0: वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक, यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं, बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी।
1: ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था?
0: ऐसे प्लेज मैंने काफ़ी किए हैं, बट सक्सेस के तौर पे जिसको कह सके, या लोगों की तरफ से जो मुझे एक्सेप्टेंस हुई, वो था पुरुष करके,
1: जी,
0: जयवंत दलवी जी का प्ले था, जो विजय मेहता जी ने डायरेक्ट किया था,
1: बाद में उन्होंने दोबारा
0: वो हिंदी
1: किया।
0: में हुआ,
1: जी
0: मगर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट आई
1: जी
0: कैन से।
1: वैसे तो जो हिंदी दर्शक हैं उन्होंने आपको मैंने प्यार किया इस फिल्म से पहचाना, लेकिन आपकी सिनेमा में एंट्री इससे पहले हो गई थी। शायद 1980 में आपकी पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूं तो।
0: जी, मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावणी डांस किया था, इसलिए मुझे हंसी आई।
1: अच्छा
0: मैं रोल नहीं था मेरा कुछ, मुझे लावणी से बहुत लगाव था। ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी, और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ, यू नो।
1: जी
0: सो या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था। वो लगातार दोनों फिल्म मेरे ख्याल से, कलयुग भी आई थी उसी वक्त एंड आक्रोश भी आई थी,
1: जी
0: उसके बाद अगेन देर वॉज अ बिग गैप।
1: लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थीं,
0: हाँ, सिंहासन आई थी, और दो तीन,
1: माझा घर माझा
0: हाँ,
1: संसार।
0: माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपट आई, ननन भौजे आई थी कह
1: तो
0: सकते हैं।
1: आपकी मराठी सिने यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी?
0: वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स, तू सुखीरा है, काफ़ी फिल्में की थी मैंने, बट सिंहासन, फिर ये ननन जो अभी मैंने बताई, वही फिल्म में मैंने मेरी शुरुआत हुई थी। कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में एज अ लीडिंग लेडी, उसके बाद फिर गैप आया एंड देन।
1: और रंगमंच तो आपका चल ही रहा
0: हाँ,
1: था।
0: वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था।
1: अच्छा, ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ?
0: एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था, उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में, उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा,
1: जी
0: और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में। तो मैं वहाँ गई तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग, तो मुझे पता नहीं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वॉज नरेटिंग मी द स्टोरी। मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे हो वैसे ही आप शूट करेंगे, बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे। मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ और जाता है,
1: जी
0: तो बोले नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, यू नो। तो मैंने कहा नहीं, ये कर लेती हूँ मैं, एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट। एंड राजश्री पीपल, दे आर रियली वेरी नाइस पीपल, लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है, यू नो।
1: जी
0: तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है, तो
1: जी
0: ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है।
1: मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने मां की भूमिका की होगी,
0: जी,
1: और उसके बाद फिर एक
0: फंस
1: तरह से
0: गई
1: वो
0: मैं,
1: रिवाज।
0: फंस गई मैं।
1: मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी?
0: मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है, हंसने हंसाने में बड़ा मजा आता है, सीरियस में थोड़ा थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को, यू नो, बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट आई फील। लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है, रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है, बट लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है, जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है। तो
1: कैसे
0: ऐसे
1: वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था?
0: मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है,
1: जी
0: बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल ही पूछती नहीं हूँ, एक भरोसा है, एक ट्यूनिंग है हम दोनों की, वेन एवर ही ऑफर्स मी अ रोल आई डू इट। तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है, तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं, एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं। एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज़ में, नॉट एकदम चालसी, बट उससे थोड़ा बढ़ के, बट आई वॉज फमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफियर, टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमोसफियर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने देख चुकी थी मैं जहाँ रह रही थी, तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं, या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे, वो थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं, थ्रू डायलॉग्स ओनली।
1: जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से
0: निकल आया,
1: बाहर आया, तो कैसा लगा?
0: अच्छा लगा, बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का, जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है, ये
1: जी
0: रोल का ग्राफ है, वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है। तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा

0: सिनेरियो आपको बताते हैं, उस
1: जी
0: वक्त पता चलता है, बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं, वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है. देन वी टेक द प्रिकॉशन कि पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है, यू नो. तो जब मैंने वो सीन किया, उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ, व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे. काफ़ी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा, जब आपने आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि ये
1: मतलब
0: फिल्म
1: अभिनेत्री
0: का
1: एक
0: एक,
1: तरफ हो गई
0: हाँ.
1: और कैरेक्टर आगे
0: तो
1: आ
0: कई
1: गया।
0: लोगों को ऐसा कि नहीं, माँ है, मार कैसे सकती है. अच्छा, एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल.
1: अच्छा, आपके पूरे फिल्मी करियर में आप

0: मदरफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
3: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
4: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
4: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

तेरी मुदली की धुन सुन, सपनों में गुम सुन।

0: दिया हरे हरे
1: तेल मालिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत पथ किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
2: एक बेमिसाल शायर
3: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
2: एक शानदार शख्सियत
4: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
2: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
4: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
2: कुछ बेमिसाल किस्से
4: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
2: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जाने कितने

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी, इस फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। इंदीवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में सुनते हैं ये गीत।

अलीबाबा 40 चोर फिल्म का ये गाना बना कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब डीजे यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, दिन का 1 बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफ़र शुरू होने का समय। कितना मिलता जुलता है ये समय, और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफ़र में। तो सुरीले सफ़र की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है, वाक्यांश की समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता संवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतज़ार। तो यह है आज की इबारत, और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफ़ी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मज़ेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि आपके मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखें इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफ़र हो सकता है, पर आपके गीतों का हमने इंतज़ार किया, एक आधी गीत दिखा सारे गीत तो हमें नज़र नहीं आए। चलिए, आप अगर छूट गया है तो अब बता दीजिए। जोधपुर राजस्थान से तपती दोपहरिया में प्यार भरा सलाम भेजने वाले हमारे एक श्रोता ने कुछ गाने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इबारत में शामिल शब्द समय, हर पल, दुनिया का मेला, गीत, बहार, पायल, कभी तन्हाई, माँ की मीठी लोरी, जीने का, दिल, नगमा, फसाना, कौन सा वही जाने, सुर चलती रहे जिंदगी, इंतज़ार। इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोज़मर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है। स्वरों के समन्वय को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीराने में, बहार की पायल तो झनकती ही रहती है। सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो। माँ की गोद में लोरी की तान जैसे साज और साजिंदे एक जान एक सुर हो जाते हैं। ये अनंत यात्रा है जहाँ दिल से दिल मिलाकर सुरों के साथ चलते हुए हर कदम पर संगीत की विविधता और मिठास बिल्कुल माँ के आंचल की तरह प्यारी पूर्णमय। क्या बात है, कितना खूबसूरत मैसेज। और आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है, और बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं भी भेजी हैं। हमारे एक श्रोता कह रही हैं कि आज के अर्थपूर्ण गद्यांश के लगभग सभी शब्द चुने जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द बिना झिझक चुन रही हूँ, वो है माँ और लोरी, क्योंकि आज मातृदिन है तो इन दोनों का वात्सल्य भरा जिक्र होना ही चाहिए, है ना। बिल्कुल होना चाहिए। और एक और श्रोता ने कहा है कि समय वक्त बड़ा बलवान होता है, समय को हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी ही चाल में चलता है, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप, हा हा हा, क्या बात है। ये तो बस आनंद का संवाद नहीं, हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी, जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा। आप तो हमें उन

गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपकी फरमाइश जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं, देखिए तो ज़रा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ, एक सवाल है, सवाल कुछ यूँ है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का ज़माना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा मिनट सेकंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है, जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो संदेश अब मुझसे खो गया।

है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की, तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, ज़िंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है ज़िंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूरत, माँ सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है। दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया है, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल, सिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह, बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफ़र। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी, लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज़ आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर

का ये जो राग है ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी, लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज़ आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है, बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर जो बहुत ही ख़ास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है, मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपये पहली बार कमाए और 245 रुपये की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांध कर समय देखा जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:30 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के ज़माने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज़ घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज़ आवाज़ में टन की आवाज़ होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताज़ा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए ज़िंदगी के इस सुरीले सफ़र में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज़ सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नज़र उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी, वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज़ और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियाँ भी आ गई थीं। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज़ पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब

से किसने किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और ज़रा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत

बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज़ बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना ज़रूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में ख़राब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रास्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फ़ोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नज़र रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहती हैं कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मज़ा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी एक श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात है। अपनी HMT के रिस्टवॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी HMT की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे, तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे, और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज़्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी, जो हमारे समझ में नहीं आती थी। अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूँ क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।

सा बुलबुल के दिया कोने को है आज फूलों का बुलबुल के दिया।

0: सहारा आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिवहरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूँ तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफ़र पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है भाई। हाँ सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब

अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज़ के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज़ है, अभी उस जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी, हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और

एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुर हर पल बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती, तब अचानक हवा में तैरती चप्पल रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है, उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना, बताइए किस फिल्म का है और आवाज किन की है?

0: जंगल में मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भलाई हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा वगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो ज़रा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता, प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का काटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों काटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज़्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

0: जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना, और अब इस कार्यक्रम से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार पुलिस में 15,000 से अधिक पदों पर विशेष सहायक पुलिस सैप की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की भर्ती के लिए पटना जिले के दानापुर कैंट स्थित सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित प्रारूप प्रपत्र 1 पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 मई निर्धारित की है। आयोग के अनुसार आपत्तियों के निपटारे से असंतुष्ट रहने पर अपील वाद दाखिल किया जा सकता है। इस अपील का निपटारा भी 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं प्रारूप 1 का अंतिम प्रकाशन 15 जून को किया जाएगा। राज्य में पुलों की सुरक्षा और उनके

0: रखाव में अनियमितता के मामले में इंजीनियर और उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करने वाली संस्थाओं को पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज सुबह राज्य के पहले गैर द्रविड़ पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। श्री शर्मा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल के क्षेत्रों सहित प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में परिवर्तन से राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के NH 139 पर दो वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सीवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के सभी थानाध्यक्षों और अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक में श्री झा ने हत्या, आर्म्स एक्ट और संगीन मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर अपराधियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम ने झीलिया मोहल्ले में 1,82,00,000 रुपये की लागत से 3 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को पूरा करने की पहल शुरू की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार पुलिस में 15,000 से ज्यादा ओहदों पर स्पेशल असिस्टेंट पुलिस सैप के मुआहदों पर तकरीर की जाएगी। इसका अमल 1 जून से शुरू होगा। पुलिस हेडक्वार्टर ने जवानों की तकरीरी के लिए पटना जिला के दानापुर कैंट वाक़ सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल यूनिट बनाया है। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक तकरीरी अमल में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को बिहार का मुस्तकिल बाशिंदा होना लाजमी है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इंतखाब के लिए शाये खाका फॉर्म 1 पर एतराज़ दर्ज करने की आखिरी तारीख 18 मई तय की है। कमीशन के मुताबिक एतराजात के निपटारा से गैर मुतमईन रहने पर अपील दाखिल की जा सकती है। इस अपील का निपटारा भी 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं फॉर्म 1 की आखिरी अशात 15 जून को की जाएगी। रियासत में पुलों के तहफ्फुज और उनके रखरखाव में बेजाबतगी के मामलों में इंजीनियर और उससे मुतालिक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा तामीरात सड़क के सेक्रेटरी पंकज कुमार पॉल ने बताया कि पुलों के मेयार और तहफ्फुज के साथ

समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कौमी शाहराह की निगरानी करने वाले इदारों को पुलों का हिफाजती ऑडिट करने की हिदायत दी है। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय ने आज सुबह रियासत के पहले गैर द्रविड़ पार्टी के लीडर की हैसियत से वजीर आला के ओहदा का हलफ लिया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर लोकसभा में हिजबे मुखालिफ के लीडर राहुल गांधी और दीगर मुआज़िज़ लोग मौजूद थे। इधर असम में भाजपा के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के कानून साजिया का लीडर मुंतखब किया गया है। जनाब शर्मा गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। वजारत तालीम गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में हिंदुस्तानी जबान मौसम गर्मा कैंप का इनेकाद करेगी। एक हफ्ता का ये कैंप हिंदुस्तानी जबानों में बुनियादी गुफ्तगू को सीखने, अल्फाज को जानने, अपना तारुफ देने, हकीकी ज़िंदगी की बातचीत और सकाफत की तारीफ पर मरकूज होगा। इसका मकसद कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक जामे और यकसां तालीम के नुक्ते नज़र को फ़रोग देना है। मगरबी हवा के असर से रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सीमांचल के इलाकों समेत रियासत के शुमाल मगरिब और जनूब मशरकी हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बादल गरजने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में तब्दीली से रियासत के कई ज़िलों में कम अज़ कम दर्जे हरारत में कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गया जी में कम अज़ कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में कम अज़ कम दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। अरवल जिला के मेहंदिया थाना हलका के कौमी शाहराह 139 पर दो गाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। सीवान के एसपी पूरन कुमार झा ने कहा है कि जरायम कंट्रोल में लापरवाही किसी भी सतह पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला के सभी थाना इंचार्जों और दीगर पुलिस अफसरान की मीटिंग में जनाब झा ने कत्ल, आर्म्स एक्ट और संगीन मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर जरायम पेशों को सजा दिलाने की हिदायत दी। मगरबी चंपारण के बेतिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने झिलिया मोहल्ला में 1,82,00,000 रुपए के तखमीना से तीन अहम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने की पहल की है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.crpf.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर तथा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती हेतु

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 एवं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और डी के लिए स्टोनोग्राफर के कुल 731 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु ग्रुप डी के लिए 27 वर्ष एवं ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से

0: प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
0: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के

0: भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभासपाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है।

0: और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा भोसले की आवाज़ में प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी करना तुमको पड़ा है नीचे उतरला।
0: अरे।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: मामा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अवधेश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या, मुझको भी अब

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान कित

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। अरे 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला। बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। क्या पिताजी और क्या माता।

मोहम्मद रफ़ी का गाया, औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना ये गाना। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूरका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को। याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं आनंद बश्की का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
4: लखपति? अरे क्या कह रहा है?
5: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
4: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है, अबे सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
5: है, बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
4: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
5: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ, उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था।

0: मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
1: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहाँ गाड़ रखा है?
0: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
1: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
0: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा? कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
1: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है। और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भिड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। हे भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूँ बाबूजी, चाहता हूँ। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर माँ के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए जा

0: माजी।
1: आओ कंदे स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना।

0: आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
1: ड्यूटी? ड्यूटी? आपका तार है माँ जी।
0: क्या कहा? तार? मेरा तार आया है?
1: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
0: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
1: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
0: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
1: नहीं तो
0: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
1: माँ जी बात यह है कि।
0: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
1: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा। उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
0: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
1: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
0: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना। कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
1: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो।
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर

0: दिखाओ कि गंध स्वामी आ रहा है या नहीं।
1: नानी माँ, आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि गंध स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
0: गंध स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला, जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ हमारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये। लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: माँ, मदर, मम्मी, वेर आर यू? ओ सिली ओल्ड लेडी।
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला। क्योरी छोकरी, कैसी है? माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense! ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए ये नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछें है। हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है? डाकिया कहीं का? कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओह शिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू? यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का?
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस नासमझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस

0: चिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है। तूने उस तार का असली मजबूर अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चला आया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल, कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे? पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर, चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
1: जमीन में गड़ा धन?
0: हाँ।
1: अंकल सिंगारम, ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
0: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
1: तू क्या करेगा बदमाश? चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
0: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
1: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
0: अच्छा, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे? कुछ नहीं मालूम तो ले।
1: सिंगारम, तूने ये
0: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है। इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, भाग जाना चाहिए।

0: शिंगारम, शिंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था। तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी माजी,
3: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लूं। हाँ, अरे ये नीला, नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
4: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: क्या कहा माँ जी? ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंद स्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब?
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसी श्रृंगारम ने मेरे मामा को

0: स्वामी की हत्या की थी, इसे नहीं चाकू भोका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
1: सिपाहियों, ये बदमाश सिंगारन भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या सिंगारन को खून करते हुए देखा था?
0: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं तहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। इन कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
1: अच्छा, तो सिंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता है। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी, कंद स्वामी को छोड़ दो।
2: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
1: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
3: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये सिंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
2: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
3: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है।
1: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो कंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।

0: तो माफ करो, तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
1: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
1: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चम्बलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जा

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म।

0: साहिबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
3: जी।
2: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
3: अरे बाप रे।
2: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
3: ये लो।
2: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
3: हीरोइनें भी हैं,
2: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
3: अब
2: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम

0: रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम
1: जी,
0: साहब से अलग हो गए थे।
1: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहां।
0: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास, डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो ये प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
1: कनेक्शन
0: आर्टिस्ट
1: सबके।
0: कनेक्शन सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे, यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब।
0: रमेश तलवार से, वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी, 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ, मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस

0: बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि जिस जी के पास मैं जाता रहा तो ऐसे ही अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं जस जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कुमार लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे
1: हैं।
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप जी आ जाते थे बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी। हाँ,
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस ज़माने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो का बाकी देख लेंगे चीज़ें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: जी। ज्यादा हुई, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला, जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे, तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: बोला हाँ लूँगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूँगा अगर चाहिए हो तो। आप मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब साहब। उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया, बोले अब अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं है।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार
0: साहब, दिलीप साहब

0: थे, कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ,
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं उनको एज अ राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने की। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया। जी,
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, तभी पिक्चर बना थे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था।
1: ओ,
0: मैंने ओके किया हुआ था।
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया। मैंने अच्छा सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी,
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था।
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब।
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: तो उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया, थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी सॉरी, शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से, जावेद साहब लिखने वहाँ चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहाँ से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता तो मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 साल सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने, तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुन, इतनी देर सुन सकता हूँ इतने, जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो उस तरह सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनकी कुछ एक सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला करूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो 13 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी,
1: ये ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी झुककर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब
0: जी। जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी झुककर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टर

0: पड़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
1: प्रदीप को लेके,
0: लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानिसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो सब रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बता दी। ओहो, गजब,
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है।
1: हाँ।
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ।
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिले मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह, क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी हो, वहाँ के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो यारा यार के बदले यारा।
1: अच्छा,
0: यारा
1: जी, इसीलिए वो सागर यारा किताब में आई,
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूँगा, उसमें बैठूँगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता वो।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दी,
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटें हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी और डेटें पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचें, अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट।

0: गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा यह है, ये हमारे सोचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों ज़रा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके।
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहाँ आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा, रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए।
1: वो
0: उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ, ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे वो, और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज़्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बापरे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो वहाँ, नॉर्थ में शूटिंग ओके, जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए आप, बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक, तो पहली बार तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमज़ोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों के।

0: बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
2: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहाँ लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
1: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसेफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वजवाला एमवी होडियंस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में

0: सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। श्रोताओं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन। इसमें हम आपको सुनवाएंगे बेहतरीन भक्ति गीते शाम 5:10 पर। शाम 5:30 पर हमारे श्रोता आनंद ले सकेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण का। आज के वैज्ञानिक होंगे थॉमस यंग और जगदीश चंद्र बसु। साथ ही इसमें आप सुनेंगे विज्ञान से जुड़ी कुछ नवीनतम खबरें।

शाम 6 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास में आकाशवाणी की भूमिका विषय पर आप सुनेंगे वार्ता। वार्ताकार होंगे ददन पांडे। शाम 6:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे बेहतरीन भोजपुरी गीत। 7:15 पर हमारे श्रोता सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से, इसमें आप सुनेंगे कैमूर और रोहतास जिले की स्थानीय गतिविधियों के बारे में।

शाम 7:50 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद का। शाम 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 आप आनंद लेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा का। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे बेहतरीन गजलें।

छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित गीतों का कार्यक्रम रस रंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और उसके बाद 11:05 पर आप सुनेंगे

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। वंदन कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कुछ बेहतरीन भक्ति गीत। पहला भक्ति गीत कमल बारोट की आवाज़ में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तो श्रोताओं, पंकज नागिया द्वारा गाए इसी भक्ति गीत के साथ है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण।

विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं, सड़कों से हमारी जिंदगी का अटूट रिश्ता है। सड़कें कच्ची हों या पक्की, इन्हीं राहों से चलकर हम अपनी मंजिल तय करते हैं। कहते हैं, सड़कें विकास की जीवन रेखा होती हैं, यानी यदि विकसित समाज चाहिए तो सड़कों का दुरुस्त होना आवश्यक है। 8 मई से 14 मई तक इस वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों को कम करना और सुरक्षित यातायात के लिए जागरूकता बढ़ाना। एक संकल्प के अनुसार सड़क हादसे में होने वाली मौतों और चोटों को वर्ष 2030 तक 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है, और इस लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकेगा जब आम आदमी में इस बिंदु पर जागरूकता पैदा की जाएगी। इसके लिए तेज गति न रखने, सीट बेल्ट पहनने, हेलमेट लगाने और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने पर जोर दिया जाना होगा। इस काम में स्कूली एवं कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में जागरूकता जगानी होगी, ताकि विद्यार्थीगण स्कूल कॉलेज या कोचिंग जाते समय तेज गति से यात्रा करने से बचें। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। सुरक्षित यात्रा सबके लिए जरूरी है। श्रोताओं, स्पष्ट है कि यह सप्ताह जिम्मेदार ड्राइविंग और पैदल चलने वालों तथा साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए सरकारों और समुदायों से ठोस कदम उठाने का आह्वान करता है। लगे हाथ हम आपको यह भी याद दिला दें कि जनवरी 2026 में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य थीम था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो इसे हम अब भी याद रखें तथा घटने वाली दुर्घटनाओं से सीख लेते हुए सड़कों पर सुखद यात्रा करें, गति को नियंत्रित रखें तथा यातायात के नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा के ग्लोबल सप्ताह को सफल बनाएं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एवं रेड क्रॉस दिवस से संबंधित भेंट वार्ताएं आपको सुनाएंगे। साथ ही 15 मई को मनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं।

हैं इस अंग के वैज्ञानिकों की। इस अंग के वैज्ञानिक हैं थॉमस यंग और जगदीश चंद्र बसु। 13 जून 1773 को इंग्लैंड में जन्मे थॉमस यंग एक ब्रिटिश बहुज्ञ और चिकित्सक थे, जिन्हें भौतिकी दृष्टि और भाषा विज्ञान में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग के माध्यम से प्रकाश के तरंग सिद्धांत को सिद्ध किया और मिस्र के चित लिपि को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलावा इसके यह ऐतिहासिक प्रदर्शन किया कि पौधों में भी जीवन होता है। उन्होंने केस्कोग्राफ नामक उपकरण का प्रयोग करके दिखाया कि पौधे भी गर्मी, ठंड और बाहरी बदलावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अर्थात 10 मई 1901 को उन्होंने साबित किया कि पौधों और जानवरों के संवेदन अंग समान होते हैं। यह खोज दुनिया के सामने पौधों के जीवन और उनकी संवेदनशीलता का पहला ठोस वैज्ञानिक प्रमाण थी। 30 नवंबर 1858 को जन्मे डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पूरा तत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर काम किया। इन्हें रेडियो विज्ञान का जनक माना जाता है। 23 नवंबर 1937 को सर जगदीश चंद्र बसु का निधन हो गया। तो श्रोताओं, यह थी इस अंक के वैज्ञानिकों की संक्षिप्त चर्चा। और अब एक नज़र विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरों पर। श्रोताओं, मई महीने में विज्ञान के क्षेत्र से कई बड़ी खबरें आ रही हैं, जिनमें स्पेस एक्स के नए उपग्रह प्रक्षेपण, हंता वायरस का खतरा और चिकित्सा में A1 का प्रयोग शामिल है। इसके अलावा जीवाश्म और जीनोम अध्ययन तथा अंतरिक्ष में क्वांटम सेंसर से जुड़ी खोजें भी चर्चा में है। वहीं खगोल विज्ञान से संबंधित एक खबर के अनुसार नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर क्रोकोडायल ब्रिज नामक भूवैज्ञानिक संरचना खोजी है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मौसम के पलटी मारने की खबरें आ चुकी हैं। अर्थात अब भीषण लू और गर्मी का अलर्ट है। यह बदलाव मानसून को कमजोर कर खेती और वैश्विक तापमान पर गंभीर असर डाल सकता है। अतः मौसम को लेकर सावधानियां जरूरी है। सावधान रहें, सजग रहें। श्रोताओं, कल यानी 9 मई को एक खास दिवस मनाया गया। इसे हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के नाम से जानते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई माह के दूसरे शनिवार और अक्टूबर माह में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। वैसे हमारे देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। इसे हमने 5 जनवरी को संपन्न किया है। इस दिवस का उद्देश्य होता है पक्षियों के संरक्षण, उनके आवासों की रक्षा करना और जंगली पक्षियों को कैद करने के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना इत्यादि। यह दिन पारिस्थितिक संतुलन में पक्षियों की भूमिका को रेखांकित करता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय पक्षी दिवस की थीम थी उड़ान भरता पक्षी, गति में कविता है। यह थीम पक्षियों की स्वतंत्रता, प्राकृतिक सौंदर्य और उनके संरक्षण के महत्व पर जोर देती है। साथ ही उन्हें पिंजरों में कैद करने के बजाय प्राकृतिक वातावरण में रहने और स्वच्छंद विचरण करने के अधिकार का समर्थन करती है। श्रोताओं, पक्षी हमारे आंगन को गुलजार करते हैं और पेड़ पौधों पर इनके बसेरे वातावरण को संगीतमय बनाते हैं। आज के गर्मी के मौसम में इनके लिए पानी और दाने का इंतजाम हम सबको करना चाहिए। आसपास में पेड़ पौधरोपण से इनके लिए बसेरे मिलते हैं। वैसे यदि हम चाहें तो अपने छतों की मुंडेरे पर भी

0: इनके रहने के लिए जगह बना सकते हैं। पक्षियों से संबंधित अन्य बातों को जानने के लिए सुनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम में पद स्थापित गौरव कुमार से हमारी की गई बातचीत के संपादित अंश।
1: डॉक्टर गौरव कुमार, सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान विभाग SP जैन कॉलेज सासाराम। इधर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि हमारे आंगन को अपनी चहक से संगीतमय बनाने वाली गौरैया पक्षी तेजी से लुप्त हो रही है। आप इसके क्या कारण देख रहे हैं?
2: जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो शहरीकरण जो अभी हो रहा है, मतलब पुराने घर पहले रहते थे वो अब वो रहे नहीं। अब है कि आधुनिक इमारत वो सब बनने से है क्या कि उनको घर में घोंसला बनाने का जगह उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरा क्या है कि अभी हमारे खेती बाड़ी में जो कीटनाशक जो यूज कर रहे हैं इससे भी उनका संख्या जो कम होते जा रहा है। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अपनी गौरैया है इनका मुख्य आहार है वो कीड़े हैं, कीट पतंग हैं
1: जी।
2: लेकिन ये जो कीटनाशक का उपयोग जो हम लोग कर रहे हैं जिससे इनका भोजन है जो कम हो जा रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है। और तीसरा जो है वो आपका मोबाइल टावर को भी हम लोग देखते हैं कि मोबाइल टावर से भी जो रेडिएशन निकलता है इसके वजह से भी इसकी संख्या कम हुई है। लेकिन अभी जो शोध जो हुआ है उसमें इसको 100% इसको वैज्ञानिक लोग अभी नहीं मान रहे हैं। मतलब हाँ, इस रेडिएशन से भी कुछ इनकी संख्या कम हुई है, ये शोध अभी जारी है
1: जी।
2: और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रदूषण और जो अभी हमारा इतने सारे जो रोड वगैरह का जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसके वजह से क्या है कि प्रदूषण और इसके साथ साथ हमने पेड़ों की भी कटाई कर रहे हैं जिससे पेड़ की कमी होते जा रही है। और लास्ट जो इसका मुख्य कारण है वो है कि हम लोग इसके लिए खुला अनाज और जो दाना है ना वो इनको बहुत कम मात्रा में आजकल मिल रहा है जिसकी वजह से है जो कि इनका विलुप्त का कारण बनते जा रहा है।
1: जी। डॉक्टर गौरव कुमार जी कहते हैं कि गौरैया पक्षी से पारिस्थितिकी तंत्र को भी बहुत लाभ होता है, आप इस बिंदु से कितने सहमत हैं?
2: इससे हम 100% सहमत हैं, क्योंकि अगर हम ये जो गौरैया है इससे हमारा पेड़ पौधों का भी संरक्षण होता है, क्योंकि वो एक जगह से दाना चुनकर दूसरे जगह पे जब वो जाते हैं तो उस बीच में जो भी है मतलब बीज वगैरह वो कहीं ना कहीं है जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमें वो पौधों की संख्या में हमें बढ़ाने में ये काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि हमारा पारिस्थितिकी में भी संतुलन बना रहता है। जी, इस ये है जो कि हमारा कीट नियंत्रण में सबसे ज्यादा इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि इनका मुख्य आहार भोजन कीड़ा ही होता है। दूसरा है जो कि हमारे पर्यावरण के अगर ये अगल बगल हमें दिखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज संकेत देता है कि हमारा जो पर्यावरण है।
1: डॉक्टर गौरव कुमार जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी, धन्यवाद।
0: श्रोताओं, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है परिवार की महत्ता, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और बाल कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इत्यादि। इस वर्ष के लिए इस दिवस का थीम है परिवार असमानताएं और बाल कल्याण। यह थीम जोर दे रही है कि बढ़ती असमानताएं पारिवारिक जीवन को कैसे आकार दे रही है और बच्चों के भविष्य इनसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे परिवार हमारी आर्थिक प्रगति के सूत्रधार हैं, अतः परिवारों को संयुक्त बनाए रखने में अपनी सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। श्रोताओं, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। मानवता की सेवा के लिए मनाया जाने वाला यह दिवस युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता का सुनिश्चय करता है। इस अवसर पर मानवता, करुणा और लोगों के बीच शांति का संदेश फैलाने का काम किया जाता है। वर्ष 1859 से शुरू इस दिवस के अवसर पर अपने जिले रोहतास और कैमूर दोनों

0: में ही अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं और रक्त अधिकोष को भी समृद्ध बनाया जाता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी भभुआ कैमूर प्रसून मिश्र जी।
1: सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी भभुआ, प्रसून मिश्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मिश्रा जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि रेड क्रॉस दिवस 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है?
2: अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आकाशवाणी जैसे सशक्त और प्रभावी माध्यम से आपने लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचाने का अवसर दिया। रेड क्रॉस की स्थापना स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 8 मई 1828 को जन्मे श्री जीन हेनरी ड्यूनेंट साहब ने की थी, और रेड क्रॉस के माध्यम से उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा एवं सहायता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया था, जिसके लिए वर्ष 1901 में उन्हें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
1: जी
2: उनके सम्मान में उनके जन्म दिवस को रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम लोग श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, और इस दिन पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा का अपना संकल्प दोहराते हैं।
1: जी प्रसून मिश्र जी, यूं तो रेड क्रॉस सोसाइटी का इतिहास काफी पुराना है, पर अब हम आपसे अपने श्रोताओं के लिए यह भी जानने को उत्सुक हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य क्या हैं।
2: एक पंक्ति में कहें तो पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा।
1: जी
2: शुरुआती दौर में रेड क्रॉस भयंकर युद्धों के दौरान घायल सैनिक और असैनिक लोगों को युद्ध के मैदान या प्रभावित क्षेत्र से बचाकर बाहर लाता था और उनकी चिकित्सा एवं पुनर्वास का प्रबंध करता था। युद्धरत देश भी रेड क्रॉस को एकमात्र निष्पक्ष संस्था मानकर उसे इस काम की अनुमति देते थे। बाद में प्राकृतिक और मानवीय आपदा, विभिन्न प्रकार के संकटों के समय भी रेड क्रॉस ने सेवा और सहायता का कार्य करना आरंभ किया। वर्तमान में यह युद्ध के मोर्चों, युद्ध प्रभावित एवं आपदा प्रभावित नागरिकों, चिकित्सा, रक्तदान आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। वर्तमान में विश्व में 1,70,00,000 से अधिक रेड क्रॉस कर्मी एवं स्वयंसेवक निष्ठापूर्वक पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हैं।
1: जी
2: बिहार के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो रेड क्रॉस राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सभी शाखाओं से एक नई अपील की है कि टीबी उन्मूलन के लिए कार्य किया जाए, और इस क्षेत्र में भी अब बिहार रेड क्रॉस की सभी शाखाएं कार्य कर रही हैं।
1: मिश्र जी, अब हम आते हैं अपने जिला कैमूर की परिधि में। तो कैमूर जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी किस तरह काम कर रही है?
2: जी, रेड क्रॉस की जिला शाखा प्राकृतिक आपदा, मानवीय संकट जैसे गंभीर दुर्घटना, महामारी, रक्तदान आदि, टीबी मरीजों के पोषण आदि के क्षेत्र में कार्यरत है। कोविड महामारी के समय हमारी शाखा ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया था।
1: जी
2: उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण भारत से जो हजारों प्रवासी मजदूर और कामगार रेलगाड़ियां, बसें और निजी वाहन ला रहे थे, वो कैमूर जिले से ही बिहार में प्रवेश करते थे। वर्ष 2019 में हमारे स्वयंसेवकों ने 12,000 से अधिक ऐसे प्रवासी लोगों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य एंट्री पॉइंट पर अल्पाहार और एनर्जी ड्रिंक निःशुल्क उपलब्ध कराया और उनकी सेवा की। उनके लिए हजारों फूड पैकेट और आवश्यक सामग्री जैसे तौलिया, साबुन, तेल, शेविंग किट, बुखार, दर्द आदि के टेबलेट का किट बनाकर उन्हें दिया। यह सब आम लोगों और जिला प्रशासन के सहयोग से ही संभव हो पाया। इस सराहनीय सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं।

0: ज्यादातर गरीब लोगों को होती है और उसका कारण कुपोषण होता है अधिकांशतः। तो उन मरीजों के पोषण के उनकी दवा तो चलती है, सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाती है, लेकिन बहुत कड़ी दवाएं होती हैं, तो उनको पोषक आहार की जरूरत पड़ती है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है निक्षय मित्र योजना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से एक मरीज या कई मरीजों को गोद लेकर उन्हें 6 महीने तक पोषक आहार प्रदान करता है। इस योजना के तहत हमने 40 TB मरीजों को गोद लेकर लगातार 6 महीने तक उन्हें पोषक आहार उपलब्ध कराया, जिससे दवाओं का सकारात्मक प्रभाव हुआ और वे रोग मुक्त हो गए। इस क्षेत्र में और कार्य करने की जरूरत है।
1: जी
0: आकाशवाणी सूचना का सबसे सशक्त माध्यम है। मैं आपके माध्यम से सभी समर्थ जन से अपील करता हूँ कि इस योजना के तहत कम से कम एक मरीज को गोद लें और 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से 6 माह तक पोषक सामग्री प्रदान करें। इससे एक गरीब की प्राण रक्षा होगी और भारी पुण्य होगा।
1: जी
0: जी
1: प्रसून मिश्री जी, इस वर्ष
0: जी
1: की रेड क्रॉस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। आपके विचार से इस थीम के निहितार्थ क्या हैं?
0: देखिए, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव इस वर्ष की थीम उन रेड क्रॉस स्वयं सेवकों एवं कर्मियों के समर्पण का सम्मान करती है, जो दुनिया भर में संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों का सामना कर रहे समुदायों को जरूरी देखभाल, करुणा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके अथक प्रयासों को यह उजागर करती है, जो सबसे पहले मदद पहुंचाते हैं।
1: जी
0: साथ ही यह मदद पहुंचाने में निष्पक्षता और तटस्थता पर भी जोर देती है, साथ ही उनके द्वारा पीड़ित जनों के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती।
1: सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी भभुआ प्रसून मिश्रा जी, अब अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा सभी श्रोता भाइयों से कि जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो काम करना जरूरी है, यह भी एक बहुत जिम्मेवारी है बड़ी, लेकिन इसके साथ साथ समाज के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा या सप्ताह में 2 घंटा, और उसमें वैसे लोगों के नजदीक जाना चाहिए अपने समाज के, जो कि जिनको मदद की दरकार है। और हम लोग इस तरह से सोचें और एक एक आदमी की भी मदद करे सप्ताह में, तो
1: जी
0: बहुत से ऐसे लोगों की मदद हो सकती है, इससे हमारा समाज मजबूत होगा और देश मजबूत होगा।
1: प्रसून मिश्र जी, आज किस प्रकार मनाया गया यह दिवस भभुआ में?
0: आज हम लोगों ने श्री जेन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और हमने वो ने चर्चा की कि कैसे हम लोग अपने कार्यक्रमों का और विस्तार करें और अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके, इस बात की हमने शपथ भी ली।
1: वाह, बहुत ही सराहनीय कार्य है। सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी भभुआ कैमूर प्रसून मिश्रा जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आभार।

श्रोताओं, हमारे साथ साथ चल रही घटनाओं परिघटनाओं की यादें हमारे बीते हुए समय के वे अनुभव होती हैं जिन्हें हम अपने मन में सुरक्षित रखते हैं।

यादें वह ज्ञान या दृश्य होती हैं जिसे स्मरण शक्ति द्वारा संजोया जाता है। इनमें शामिल होती हैं बचपन के या अपनों के साथ बिताए हुए खुशनुमा पल। तो आप भी अपने यादों में बसाए रखिए अपने प्रिय जनों की मधुरतम मुलाकातों की मीठी यादें। ये आपको तन्हाई में भी मुस्कुराने के बहाने दे जाएंगी और आप अकेला होते हुए भी अपने आप को भीड़ में होने का एहसास दे जाएंगी।

श्रोताओं, आज का हमारा यह अंक आपको कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। फिलहाल आज के इस अंक से अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: बंधु

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: संदेश से पहले हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी सासाराम से प्रस्तुत कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। अब लीजिए पेश है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम। श्रोता भाई बहन, देखिए ये घड़ी लगन पताई के दिन बा, आ लगन में जाए के व्यवस्था भी बा, जहूँ के चाही सुख दुख में शामिल होकर हमनी के संस्कृति के हिस्सा रहल बा। श्रोता भाई बहन, लेकिन आवे दिन हमनी के देख तो नहीं जा कि पहले जब गांव में बारात तिलक आवत रहे तो अन्हार होखेले पहले सूर्यास्त से पहले बारात ला जाए, सूर्यास्त के समय में गोधली बेला में द्वार पूजा होखे, समय से शादी हो जाए। और ये बात के चर्चा रहत रहे कि बहुत बड़ बारात आइल बा, दू टाइम रहल बा, तीन टाइम रहल बा, आ गांव भर के लोग बूढ़ से लेके बच्चा तक ओकरा अंदर में ये अभिमान रहते कि हमारा गांव के बारात के अच्छा से अच्छा स्वागत होके, और जब तक बाराती खा ना ले तब तक गांव के आदमी भेजा जाके खाना तक ना खात रह। लेकिन आज जो परिस्थिति बदलल, यातायात के साधन बदलल, भाग दौड़ के समय बदलल, आज औपचारिकता रह गई बा, जाना तो मजबूरी बा। लेकिन अब देखो तनी कि जे तिलकहरू लोग बाड़न ओहोस कहत हण कि भाई अब 11-12 बज गई, तिलक चढ़ के लेके बज गई, हमारा के 2 बजे तक लगन पथरे दें कि हम अपना घरे निकल जाए। बाराती भी ये कर रहा बाड़न कि घर परिवार के 5-7-10 लोग भले 50 को बाराती जास, लेकिन 5-7 को शादी के समय में रहत हण, ये बहुत नज़दीक बा। अधिकांश बाराती वजह से 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात के निकलत हण। ओकर नतीजा का हो रहल बा कि आवे दिन हमनी के समाचार पत्रन में भी पढ़त नहीं जा, सुनत भी बानी जा कि सड़क दुर्घटना में अधिक से अधिक बहुत लोग के मौत हो रहल बा। और ओकर कारण भी है बा कि भाई जे ड्राइवर लेके जाता दिन भर जागल बा, रातों के तू जगा रहल बाड़ा, हल्का झपकी आवता और कहीं गाड़ी अनियंत्रित हो जाता, कहीं रोड के किनारे जोन ट्रक डंपर सब खड़ा बा उसे टकरा जाता। और नतीजा ही बा कि कई लोग ओकरा में जख्मी हो रहल बाड़ा, कई लोग के जान जा रहल बा। श्रोता भाई बहन, अगर खाली हमनी के रोहतास जिला के बात कर जाओ तो गत 4 महीना में 150 से अधिक लोग के मौत खाली सड़क दुर्घटना में हो गई बा। और इस सड़क दुर्घटना के रोके खातिर

सड़क सुरक्षा माह भी चलावल जा रहल बा। राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक चिंतित बा कि कैसे एकरा के कम कइल जाए, कैसे रोकल जाए, कैसे जागरूकता फैलावल जाए। लेकिन खाली जिला, राज्य या देश के बात नहीं है, एकरा प्रति दुनिया भर के लोग चिंतित बा। और ये दुनिया भर के लोग जो संगठन बा, संयुक्त राष्ट्र संगठन, वो 12 से 14 मई तक, 8 मई से 14 मई तक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनवा रहल बा। और पूरा दुनिया में 8 मई से लेके 14 मई तक वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनावल जा रहल बा। और यह बात के जोर दिहल जा रहल बा कि कैसे हमनी के सड़क दुर्घटना के कम कइल जा। आज के कार्यक्रम में हमनी के सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर चर्चा कइल जाई। विषय के जोन यह चर्चा के जोन विषय रही, वो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित रही। आज के हमनी के कार्यक्रम में एगो झूमर भी सुनल जाई, कलाकार होकर वंदना कुमारी, और झूमर के बोल होइए पियवा रंगदार। श्रोता भाई बहन, कहल गइल बा कि जहाँ न पहुँचे रवि वही जा पहुँचे कवि। कविता के, साहित्यकार के और ज्ञान के प्रवाह इतना तेज होला, अगर माध्यम के प्रवाह इतना तेज होला कि वो कोना कोना तक वो पहुँच जाला। जहाँ भगवान सूर्य के रोशनी निखे पहुँचत, वही जा भी संदेश पहुँच जाता। वही जा भी वो घर के उस सात तह के नीचे भी हुई हन तो वही जा पहुँचाता। और आकाशवाणी में जौन प्रसारण बा, जौन कार्यक्रम बा, ओकर जौन जनोपयोगी चीज बा, जौन विकास योजना से संबंधित बा, जौन योजना के बारे में जानकारी दिहल जा रहल बा, एकर सुदूरवर्ती क्षेत्र में कामगार होखस, किसान होखस, महिला होखस, युवा वर्ग होखस, नौकरी पेशा होखस, खिलाड़ी होखस, हर वर्ग के जौन अलग अलग कार्यक्रम बा, ओकर लाभ सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी मिल रहल बा। आज के हमनी के कार्यक्रम में आज वार्ता भी सुनल जाई। वार्ता के विषय हुई सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास में आकाशवाणी की भूमिका। और वार्ताकार होखब ददन पांडे जी। तो आज हमनी के यह पर भी चर्चा के लिए चलत चलत हमनी के मौसम के पूर्वानुमान पर भी बात हुई। लेकिन शुरुआत कर जाओ सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा से। श्रोता भाई बहन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जौन कि 8 मई से 14 मई तक मनावल जा रहल बा, इस सप्ताह पहला बार 2007 में मनावल गई। लेकिन 2013 तक एकरा के फिर ना मनावल गई। 2019 से एकरा के हर 2 साल पर मनावल जाला। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जौन आयोजित एगो विशेष वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान बा, ओकरा तहत ये कार्यक्रम मनावल जाला। और ये कार्यक्रम के उद्देश्य सड़क सुरक्षा और दुर्घटना निवारण के बारे में जागरूकता के बढ़ावा देना बा। श्रोता भाई बहन, रवानदाज ना करब कि सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना से कतना लोग के जान जा रहल बा। विश्व भर में सड़क सुरक्षा पर हर साल, विश्व भर में जो सड़क दुर्घटना में हर साल लगभग 13 लोग के मौत हो रहल बा, 13 लाख लोग के, और कम से कम 5 करोड़ से अधिक लोग घायल हो रहल बा। सड़क दुर्घटना में हर आयु वर्ग के लोग के मृत्यु के एगो प्रमुख कारण भी बा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह यही खातिर मनावल जा रहल बा कि हमनी के सड़क दुर्घटना के कैसे कम कइल जाओ, कैसे जागरूक बनल जाओ, का उपाय कइल जाओ, कैसे अपंगता से बचावल जाओ। श्रोता भाई बहन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग फॉर UAE जो UNSCE के सड़क यातायात सुरक्षा कार्य समूह में मार्च 2005 में वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुरुआत कीलस। बाद में कार्य समूह होकर सुरक्षा सप्ताह के विचार के UNSCE क्षेत्र से सीमित ना रह के ओकरा के

वैश्विक स्तर पर दुनिया भर पर विस्तार करे के पर विचार किया और अक्टूबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के निर्माण के आधिकारिक रूप से समर्थन कर दिलस। सड़क सुरक्षा के मुद्दा में जागरूकता बढ़ावे खातिर वैश्विक और क्षेत्रीय गतिविधि के एक मंच प्रदान करे खातिर और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्थापना खातिर आमंत्रित भी कैल गई। श्रोता भाई बहन, पहले संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के विषय युवा सड़क सुरक्षा रहे। एकरा से विशेष लाभ युवा वर्ग के जागरूक करे के रहे और आंकड़ा से जो पता चलल कि सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत जो होला तो युवा वर्ग के हो रहा बा, इसे उनका के जागरूक कैल जरूरी बा। श्रोता भाई बहन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार सड़क यातायात दुर्घटना में सभी आयु वर्ग के लोग के मृत्यु के एगो बहुत बड़ा कारण बा और तबे एकरा पर कमी आई जबकि हमनी के लोगन के जागरूक कैल जाओ। जब तक जागरूक लोग ना हुई तब तक सड़क सुरक्षा जो सप्ताह मनता ओकर अधिक से अधिक लाभ लोग ना उठा पाई। एकरा खातिर हमनी के चाहिए कि रह के अभियान चलावल जाओ, बच्चन के बीच जाए के चाहिए, स्कूली छात्रन के बीच बतावे के चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा असर बच्चा जब अपना अभिभावक से कोई बात कहेला तो अगर बहुत बड़ा असर होला। श्रोता भाई बहन, सड़क दुर्घटना में जो मोटरसाइकिल से दुर्घटना होता उसमें गिरला के बाद में कई लोग जान गंवा चुकलन और जो रिपोर्ट बतावता कि हेलमेट ना पहने वाला के सबसे अधिक मौत भइल बा। तो हमनी के जब गाड़ी से जात नहीं जा, बाइक से जात नहीं जा, मोटरसाइकिल स्कूटी से जात नहीं जा तो हेलमेट के उपयोग जरूर करे के चाहिए। गाड़ी चलाओ समय सीट बेल्ट के उपयोग जरूर करे के चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी के टक्कर होला तो कहीं सिर के जो आगे वाला भाग बा ओकरा के टकराए से मौत के कारण बन जाला तो ओकरा के भी रोके के बा। तो हमनी के चाहिए कि एकरा के आज के दिवस के खूब अच्छा से मनावे के उद्देश्य जोन बा तबे सार्थक होई जबकि हमनी के सबका के एकरा प्रति जागरूक कैल जाओ। श्रोता भाई बहन, आई अभी चर्चा के बाद सुनल जाओ आई लोकगीत। लोकगीत में आज झूमर सुनल जाई, बोल होई रंगदार पियोवा और गाई बेकरा के वंदना कुमारी जी। आई वंदना कुमारी के स्वर में हमने के झूमर सुनल जाओ।

0: श्रोता भाई बहन, अभी हमने के सुनत रहनी है जा झूमर बोल रहल है रंगाद पियावा कुसुम रंग रनी रंगाद पियावा। श्रोता भाई बहन, एक गीत के ये झूमर के सुनत रहनी है जा एक आवाज़ जोन रहल है तो वंदना कुमारी के रहल है और इतना बढ़िया यहाँ के गौनी है झूमर के मन खुश हो गई है। श्रोता भाई बहन, सुदूरवर्ती क्षेत्र के विकास में आकाशवाणी के का भूमिका बा यह विषय पर हमने के वार्ता सुनल जाइए, लेकिन एकरा पहले हमने के सुन लिया जावे ये वो संदेश।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता आ सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करी 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
0: श्रोता भाई बहन, आई सुनल जाओ हमनी के सुदूरवर्ती क्षेत्र के विकास में आकाशवाणी के भूमिका पर वार्ता। वार्ताकार बनी ददन पांडे जी, तो आई सुनल जाओ ये वार्ता।
3: आज का युग सूचना का युग है। आज जो जितना अधिक सूचना संपन्न है वह उतना ही विकसित है। सूचनाओं का विस्तार संचार माध्यमों के जरिए होता है। पत्र पत्रिका रेडियो टेलीविज़न के बाद अब इंटरनेट भी एक प्रमुख संचार माध्यम बन गया है। आज विकसित समाज में उसे पिछड़ा माना जाता है जो इंटरनेट की दुनिया से नहीं जुड़ा है। विकास के दौर में संचार माध्यमों का विकास भी निरंतर हो रहा है। पत्र पत्रिकाओं का जनमानस पर अच्छा प्रभाव रहा है।

लोग रोज रोज की घटनाओं से परिचित होने के लिए समाचार पत्रों के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें अनेक तरह की जानकारियां मिलती हैं। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि लोग शिक्षित हों। शिक्षित व्यक्ति ही अखबार पढ़ सकता है। भारत जैसे देश में जहां अभी भी सभी को शिक्षित नहीं किया जा सका है और निरक्षरों की बड़ी संख्या है, उनके लिए पत्र पत्रिकाओं का कोई मतलब नहीं है। फिर पहुंच के लिहाज से पत्र पत्रिकाओं का प्रसार क्षेत्र शहरों और कस्बों तक सिमटा हुआ है और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी आज भी उससे वंचित है। यद्यपि आज़ादी की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ होने के बाद संचार माध्यमों में एक युगांतकारी शुरुआत हुई। एक छोटे से रेडियो सेट पर दूर दराज की आवाज़ सुनना जादुई चमत्कार जैसा था। वैज्ञानिक विकास के क्रम में फिर टेलीविज़न आया, जिसकी आज बड़ी

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ होने के बाद संचार माध्यमों में एक युगांतकारी शुरुआत हुई। एक छोटे से रेडियो सेट पर दूर दराज की आवाज़ सुनना जादुई चमत्कार जैसा था। वैज्ञानिक विकास के क्रम में फिर टेलीविज़न आया, जिसकी आज बड़ी धूम है। आज उससे आगे इंटरनेट का ज़माना आ गया है। विकास के दौर में नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। इंटरनेट आज भी आम आदमी के पहुंच से बाहर है। टेलीविज़न ने उससे आगे की दूरी तय की है और उसकी पहुंच बढ़ी है, किंतु सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी रेडियो यानी आकाशवाणी की पहुंच सबसे अधिक है। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके संवाद सिर्फ सुने जाते हैं और वह हर आदमी उसके संदेश को सुन सकता है जो बधिर न हो। आकाशवाणी का श्रोता पढ़ा लिखा नहीं हो, फिर भी वह उसका लाभ उठा सकता है। टेलीविज़न और इंटरनेट के लिए बिजली आवश्यक है, लेकिन रेडियो के लिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं है। आज के महंगे युग में रेडियो सेट 100-200 रुपए में भी उपलब्ध हैं। अत्यंत सस्ता होने के कारण यह रेडियो सुदूर देहातों तक, जहां बिजली नहीं पहुंची, वहां भी अपनी पहुंच बना चुका है। जंगल, पहाड़, खेत खलिहान, कहीं भी रहकर रेडियो का प्रसारण सुना जा सकता है। आज देश भर में 188 आकाशवाणी के स्टेशन हैं, जिससे पूरे देश में रेडियो के संदेश प्रसारित होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 80% आबादी गाँव में बसती है। कृषि के विकास के लिए नई वैज्ञानिक जानकारियाँ आकाशवाणी के कार्यक्रमों में नियमित दी जाती हैं। कीटनाशकों का प्रयोग कब और कैसे करना है, उर्वरकों का प्रयोग कब कब करना है, अच्छे किस्म के बीज कहाँ से प्राप्त होंगे, किस मौसम में किस चीज़ की खेती करना लाभदायक होगा, इस तरह की तमाम जानकारियाँ किसानों को नियमित आकाशवाणी के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में और क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती हैं, जिससे सुदूर देहाती क्षेत्र के अनपढ़ किसान भी लाभ उठा सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती और उत्पन्न अनाज के सही मूल्य कैसे और कहाँ मिलेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त कर किसान लाभान्वित होते हैं। कृषि संबंधी रेडियो कार्यक्रम अक्सर शाम को प्रसारित किया जाता है, जब किसान दिन भर के खेती के कार्य से मुक्त होकर घर लौटते हैं। किसान शाम को कृषि कार्यक्रम और समाचार जरूर सुनते हैं, जिसमें उन्हें प्रदेश भर की सूचना और मौसम की जानकारी मिल जाती है। देहात में लोग शाम को नियमित एक जगह बैठकर रेडियो प्रसारण सुनते हैं और फिर उस पर उनके बीच चर्चा होती है। बीच बीच में क्षेत्रीय भाषाओं के गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होता है। आकाशवाणी की पहुँच सुदूर देहातों तक है, जहाँ अन्य कोई संचार माध्यम नहीं पहुँचते। आज सुदूर देहातों में भी वैज्ञानिक तरीके से खेती होने लगी है। कम सिंचाई में अधिक फसल लेने की विधि से अनपढ़ किसान भी लाभ उठा रहे हैं, और यही कारण है कि आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। किसानों को लाभप्रद खेती के लिए शिक्षित करने में आकाशवाणी ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। देहातों का एकमात्र संचार माध्यम होने के कारण आकाशवाणी द्वारा प्रसारित सूचनाएं दैववाणी के रूप में सत्य मानी जाती हैं। लोग आकाशवाणी द्वारा घोषित समय से अपनी घड़ी का समय मिलाते हैं। मौसम के पूर्वानुमान से ग्रामीण काफ़ी लाभान्वित होते हैं। बाढ़ जैसी विपदा में भी रेडियो ही एकमात्र ऐसा माध्यम होता है जो पानी के घटने या बढ़ने की जानकारी लोगों को देता और बचाव कार्य से अवगत कराता है। बाढ़ जैसी विपदा में बेघर होकर लोग रेडियो के ही सहारे अगले दिन होने वाले राहत कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं और आगे बचाव की तैयारी करते हैं। किसी विपदा में जब अन्य संचार माध्यम नष्ट हो जाते हैं, आकाशवाणी की सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहती हैं और लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। आकाशवाणी के समाचार के अलावे मनोरंजन के कार्यक्रम भी देहातों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। शाम को प्रसारित होने वाले समाचार लोग नियमित सुनते हैं और देश दुनिया के साथ अपने ज़िले जवार की घटनाओं से वाकिफ हो जाते हैं। देहातों में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना दैनिक नियम की तरह होता है, क्योंकि वह काफ़ी जानकारीपूर्ण और उपयोगी होता है।

आकाशवाणी की महत्ता आज टेलीविज़न और इंटरनेट के पदार्पण के बाद भी पूर्ववत बरकरार है। खासकर देहातों में तो आकाशवाणी आज भी अपना एकाधिकार बनाए हुए है। संपन्न ग्रामीण देहातों में भी टेलीविज़न रखे हुए हैं, किंतु बिजली के अभाव में वह कार्य नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में एकदम सस्ता और आसानी से उपलब्ध रेडियो ही सुदूर क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। कृषि के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के जरिए पशुपालकों और मत्स्य पालकों को दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार के जितने भी जनउपयोगी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका अग्रणी रही है। बागवानी, फूल और फल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, इसके प्रचार के लिए आकाशवाणी ने समय समय पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कर लोगों को लाभ पहुंचाया है। मिट्टी की जांच से लेकर रासायनिक खादों के खेती पर होने वाले कुप्रभाव से आकाशवाणी के कार्यक्रम किसानों को सचेत करते रहते हैं। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के उपाय पर भी आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिसका लाभ किसान उठा रहे हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और किसान गांव में बसते हैं, जहां आकाशवाणी की पहुंच है। इसलिए आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, अल्पसंख्यक कल्याण, नारी सशक्तिकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी के समाचार और कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। लोक अदालत और उनसे होने वाले लाभ के अलावे समसामयिक विषयों पर वार्ता के माध्यम से महत्वपूर्ण विचार लोगों के बीच प्रसारित होते हैं। विशेषज्ञों के वार्ता और साक्षात्कार के माध्यम से भी आकाशवाणी ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित कर रही है। FM स्टेशनों के माध्यम से होने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है और इसका लाभ ग्रामीण लोग अधिक उठा रहे हैं। सासाराम में भी FM चैनल का एक रेडियो स्टेशन है, जिसका प्रसारण क्षेत्र रोहतास और कैमूर जिला है। इसका उद्घाटन 2 मई 1991 में हुआ था। इस स्टेशन में ध्वन्यांकन सुविधा युक्त बहुउद्देशीय स्टूडियो है और हवा में इसका प्रसारण क्षमता 55 किलोमीटर है। 3.8 एकड़ में यह स्टेशन फैला है, जिसमें 292.27 वर्ग मीटर में भवन बना हुआ है। 103.4 MHz पर इसके प्रसारण सुने जा सकते हैं। क्षेत्रीय ज़रूरतों के हिसाब से प्रसारित इस स्टेशन के कार्यक्रम काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं और प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में श्रोताओं की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, उससे पता चलता है कि इसके कार्यक्रमों का दायरा कितना विशाल है और उसका लाभ कितना बड़ा वर्ग उठा रहा है। 100 मीटर ऊंचा एंटीना वाले इस स्टेशन के कार्यक्रम गांव देहात से लेकर कैमूर पर्वत के ऊपर और जंगलों में भी सुना जाता है। भारत जैसे विकासशील और बिहार जैसे पिछड़े तथा नदियों, पहाड़ों और जंगलों से घिरे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी आकाशवाणी ही सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम है, जो बिना बाधा के अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करता रहा है और उसे जन जन तक पहुंचाने में सक्षम है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो रेडियो से परिचित न हो। रेडियो आज किसी के लिए दुर्लभ नहीं है। यही कारण है कि उसके कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके लोकप्रिय कार्यक्रम लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। फसलों में वृद्धि और किसानों की हालत में सुधार में कृषि पर आधारित कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास में आकाशवाणी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच ही कारगर है। आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार सुदूर क्षेत्रों तक होना ही इसकी महत्वपूर्ण

0: पूर्ण भूमिका का प्रमाण है।
1: श्रोता भाई बहन, अभी हमने क्या सुना, रानिया जाए वार्ता, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास में आकाशवाणी की भूमिका, वार्ताकार रानिया ददन पांडे जी। अब चला चला तक मौसम के मिजाज पर भी नज़र डाल जाओ। आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 65% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 25% रहा। हवा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा और जिला के एक या दो स्थान पर हल्का मने आंधी आवे के, बिजली चमके के, ओला वृष्टि के भी संभावना जतावल जा रहा बा। श्रोता भाई बहन, अब कार्यक्रम के समय और आ गिल बा। कार्यक्रम संपन्न करे के अनुमति दें सब श्रोता भाई बहन के। सुमन भाई की ओर से प्रणाम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। अब आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव से। आवाज़ है चंद्रानी मुखर्जी की, लक्ष्मण शाहबादी के शब्द हैं और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

दूल्हा गंगा, अभी आपने सुना फिल्म में गंगा किनारे मोरा गांव का यह खूबसूरत भोजपुरी गीत। आवाज़ थी चंद्राणी मुखर्जी, शब्द थे लक्ष्मण शाहबादी के और संगीत से सजाया था चित्रगुप्त ने। श्रोताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म अमर सुहागिन से। आशा भोसले के स्वर हैं, एस एन त्रिपाठी के शब्द हैं और राममूर्ति चतुर्वेदी ने इसे संगीत से नवाजा है।

श्रोताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म अमर सुहागिन का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत। आवाज थी आशा भोसले की, एसएन त्रिपाठी के शब्द थे और राममूर्ति चतुर्वेदी ने इसे संगीत से सजाया था। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है बलमा बड़ा नादान, संगीत दिया है सुजीत कुमार ने।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने सुना बलमा बड़ा नादान फिल्म का या खूबसूरत भोजपुरी गीत संगीत दिया था सुजीत कुमार ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नदिया के पार से। आवाज़ें हैं सुरेश वाडेकर और हेमलता की, संगीत और गीत हैं रविंद्र जैन के।

नदिया के पार फिल्म का अभी आपने यह गीत सुना। कार्यक्रम सांझ गीत में सुरेश वाडकर और हेमलता की आवाज़ें थीं। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म जय संतोषी माँ से उषा मंगेशकर की आवाज़ है। कवि प्रदीप ने इस गीत को लिखा है और सी अर्जुन के संगीत हैं।

उषा मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना जय संतोषी माँ फिल्म का यह खूबसूरत गीत है, जिसे लिखा था कवि प्रदीप ने और संगीत दिया था सी अर्जुन ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं उदित नारायण और कल्पना की आवाज़ों में फिल्म साथी संघाती का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत है। शब्द हैं विनय बिहारी के।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म साथी संघाती का या भोजपुरी गीते, आवाजें थी उदित नारायण और अनुराग कल्पना की। कार्यक्रम का अगला और आखिरी पेशकश है फिल्म सैया हमार से, आवाज़ें हैं उदित नारायण और अनुराधा पांडवाल की, शब्द हैं विनय बिहारी के और संगीत दिया है ताबुन सुजीत कुमार ने।

अनुराधा पौंडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म में सैयां हमार का, या भोजपुरी गीत है, शब्द थे विनय बिहारी के और संगीत दिया था ताबुन सुजीत कुमार ने। तो श्रोताओं, इसी के साथ है भोजपुरी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। गुड इवनिंग रोहतास।

सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। श्रोताओं, सबसे पहले आइए हम एक नज़र डाल लेते हैं आज रोहतास और कैमूर की स्थानीय गतिविधियों पर। श्रोताओं, अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर के तत्वावधान में नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस सासाराम में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी दिनेश तिवारी ने बताया कि प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हेल्थ केयर के क्षेत्र में जीडीए सेमी नर्स के पद के लिए 40 रिक्तियां दी थी। इस जॉब कैंप में 52 आवेदकों की उपस्थिति देखी गई, जिसमें से 44 आवेदकों ने अपना बायोडाटा जमा किया। MBA लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा साक्षात्कार के बाद 36 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसके बाद इन युवाओं को 10 कार्य दिवस के अंदर कंपनी के द्वारा कार्यस्थल पर योगदान देने के लिए बुलाया गया है। इस जॉब कैंप के सफल संचालन के लिए नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संस्थापक शशि कुमार, नियोजक विष्णु कुमार, विकास कुमार वर्मा एवं अन्य कर्मियों का काफी सहयोग रहा। श्रोताओं, कुशल युवा कार्यक्रम योजना के लाभ के लिए अभ्यर्थियों को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कैमूर में सत्यापन कराना होता है। उसके बाद से अभ्यर्थी KYP सेंटर पर ट्रेनिंग के लिए नामांकित होते हैं। छात्रों को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर भेजने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर ने सभी उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है। छात्रों को सत्यापन के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस बारे में सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है। श्रोताओं, 2026 से शेरशाह सूरी महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी गंभीर है। रील प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रील अवधि 30 सेकंड से 1 मिनट 30 सेकंड का होगा। रील भेजने के लिए

ईमेल आईडी है shersasurimahotsav@gmail.com। रील गूगल ड्राइव पर भी आप अपलोड कर लिंक ईमेल पर भेज सकते हैं। रील भेजने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। प्रथम पुरस्कार के तहत 5,000 रुपये की राशि, द्वितीय पुरस्कार के तहत 3,000 रुपये की राशि, तृतीय पुरस्कार के तहत 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को रोहतास जिला प्रशासन द्वारा पार्टिसिपेट प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। श्रोताओं, अगले 10 से 13 मई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा और आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं गर्मा फसलों के साथ आने वाली अगली खरीफ फसलों की तैयारियों को लेकर भी किसानों को एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि इस

संभावना है। इस दौरान तेज हवा और आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं गर्मा फसलों के साथ आने वाली अगली खरीफ फसलों की तैयारियों को लेकर भी किसानों को एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि इस बीच जब तक आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, जो सामान्य है। यह मौसम गर्मा मूंग और उड़द की फसल में कीट प्रबंधन को लेकर सलाह दी गई है। इस अवधि में सामान्य तौर पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का भी अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस अवधि में तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी के साथ जिले का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक के रह सकता है। आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वानुमान की अवधि में कैमूर जिले में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। मौसम के उतार चढ़ाव से फसलों को लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है किसान फसल को सुरक्षित भंडारण को पूरी कर लें, इसके साथ ही उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से अलग अलग फसलों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नेहा पारिक ने बताया है कि इस अवधि में 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा अलग अलग सब्जियों की फसल को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। श्रोताओं, कैमूर के 3 अंचलों में 8 बाढ़ शरण स्थलों का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ प्रखंडों में संभावित बाढ़ स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रशासन के सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊंचे स्थलों पर बाढ़ शरण स्थलों की पहचान कर ली गई है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर दुर्गावती 4, रामगढ़ 3 और नुआओं में 1, कुल 8 बाढ़ स्थलों और 8 सामुदायिक रसोई केंद्रों का चयन किया है। जिला पदाधिकारी कैमूर द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि वे सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर सर्पदंश की दवा, ORS घोल और अन्य आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें। पशुपालन विभाग को पशु चारे और दवाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में बचाव कार्य के लिए 19 गोताखोरों की सूची उपलब्ध है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं से पहले आइए सुन लेते हैं कुछ संदेश।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
3: ब्रो, ये फटा है।
4: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
6: कूल रहो।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: स्वच्छता की आवाज आकाशवाणी के साथ।
1: इधर आइए, इधर।
0: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
0: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
0: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में फेरबदल, कई आईएएस ऑफिसर का भी तबादला। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द संभव, मंत्री निशांत कुमार और दीपक प्रकाश परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने आज बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज खुद राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है।
1: समाज, राजनीति और सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली होता है और कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाता है। अब जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। अब ये समाज की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। जब समाज सक्रिय हो जाता है तब देश की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामूहिक समाधान निकाला जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कानून व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार भी मौजूद थे। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 28 जून को खाली हो रहे इन सीटों के लिए इस महीने के अंत तक चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। एनडीए से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश का परिषद सदस्य बनना तय माना जा रहा है। जदयू से जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसमें गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा और भगवान सिंह कुशवाहा शामिल हैं। वहीं राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। भाजपा से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संजय मेहूक की सीट खाली हो रही है, जबकि कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सम्राट सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सुधांशु कुमार को एडीजी विधि व्यवस्था और विकास वैभव को मगध क्षेत्र का आईजी बनाया गया है। वहीं नैयर हसनैन खान को आर्थिक अपराध इकाई से हटाकर विशेष सशस्त्र पुलिस बल की जिम्मेदारी दी गई है। अधिसूचना के अनुसार तकनीकी सेवाएं एवं संचार के एडीजी निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के एडीजी डॉक्टर अमित कुमार जैन अब आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी होंगे। चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से हटाकर एडीजी तकनीकी सेवाएं एवं संचार बनाया गया है। इधर सामान्य प्रशासन

0: विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। आनंद किशोर फिलहाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। एचआर श्रीनिवास को समाज कल्याण विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। संतोष कुमार मल्ल को जल संसाधन विभाग से हटाकर आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के तौर पर काम कर रहे कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। लोकेश कुमार सिंह को पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है। अजय यादव को ऊर्जा विभाग और संजय कुमार सिंह को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। प्रणव कुमार को भवन निर्माण विभाग का नया सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रशेखर सिंह अब जल संसाधन विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। बिहार पुलिस में 15,000 से अधिक पदों पर विशेष सहायक पुलिस सैप की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की भर्ती के लिए पटना जिले के दानापुर कैंट स्थित सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज सुबह राज्य के पहले गैर द्रविड़ पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिश्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। इधर सारण के हरिहरनाथ मंदिर में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। आयोजन में भक्ति संगीत, स्तुतिगान और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने शेखपुरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में चार्जिंग प्वाइंट का जाल बिछाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
2: बिहार में पर्यावरण की समस्या बन रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हम लोग प्रोत्साहित करने जा रहे हैं और ये इसको प्रोत्साहित करने के क्रम में हम लोग समूचे बिहार में चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं।
0: खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा है कि राज्य में सुशासन का राज कायम करना सरकार की प्राथमिकता है। श्री चंद्रवंशी ने मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। राज्य में पुलों की सुरक्षा और उनके रखरखाव में अनियमितता के मामले में इंजीनियर और उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुलों की गुणवत्ता और

0: सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करने वाली संस्थाओं को पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। एम्स पटना में आज नवजात शिशु देखभाल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से स्वास्थ्यकर्मियों, सरकारी अधिकारियों और नवजात शिशु विशेषज्ञों ने भाग लिया। राष्ट्रीय नवजात विज्ञान फोरम की ओर से आयोजित इस शिविर में एक ही दिन में 18,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को नवजात पुनर्जीवन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक सह कुलपति डॉक्टर राजू अग्रवाल ने इस प्रशिक्षण को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्यकर्मी हर परिस्थिति में प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। कार्यक्रम में यूनिसेफ बिहार की चीफ ऑफ फील्ड ऑफिसर मोनिका नीलसन, सांसद डॉक्टर संजय अग्रवाल और एम्स पटना के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनूप कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल के क्षेत्रों सहित प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया है।
1: दिनांक 11 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम में परिवर्तन से राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के NH 139 पर दो वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के सभी थानाध्यक्षों और अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक में श्री झा ने हत्या, आर्म्स एक्ट और संगीन मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर अपराधियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम ने झीलिया मोहल्ले में 1,82,00,000 रुपये की लागत से 3 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को पूरा करने की पहल शुरू की है। जहानाबाद जिला ने 7 निश्चय और 1 और 2 की योजनाओं के कार्यक्रम में क्रियान्वयन में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार की ओर से अप्रैल 2026 के लिए जारी रैंकिंग रिपोर्ट में जहानाबाद ने यह उपलब्धि दर्ज की है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के विश्वामित्र स्थान और कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि दोनों स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास से जिले में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद पूर्व रेलवे ने देवघर और सरायगढ़ के बीच 31 मई तक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में यात्रा के दौरान बांका, बाराहाट, भागलपुर, सुल्तानगंज, रतनपुर और मुंगेर स्टेशनों पर रुकेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सशक्तिकरण और आंतरिक सुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में फेरबदल, कई IAS ऑफिसर का भी तबादला। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द संभव। मंत्री निशांत कुमार और दीपक प्रकाश परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत।

0: गया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: रोहतास जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। यह प्रक्रिया 2 मई से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि मकान सूचीकरण कार्य के तहत परगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इससे पूर्व स्वगणना में जिलावासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूछे गए सवालों के जवाब देकर जनगणना में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने स्वगणना में भाग नहीं लिया उन्हें भी मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक जनगणना में शामिल करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले में आंधी तूफान और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति देखने को मिली, जिससे लोग परेशान दिखे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति बने रहने की आशंका है। जिले के तीनों व्यवहार न्यायालयों में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सासाराम व्यवहार न्यायालय में उपस्थित न्यायाधीशों और अधिकारियों द्वारा लोक अदालत का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जिला जज अनुज कुमार जैन, एसपी रोशन कुमार सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। लोक अदालत में विभिन्न मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निष्पादन किया गया। शिक्षा विभाग की पहल पर रोहतास जिले के मॉडल स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सासाराम स्थित शेर सासुरी इंटर स्तरीय स्कूल में स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्रों को डिजिटल और प्रैक्टिकल सुविधा का लाभ मिल रहा है। इस मॉडल स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने बताया कि बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
3: शुरुआत हुई है मॉडल स्कूल का, अभी तो चिन्हित हुए हैं और एक सेक्शन पढ़ाई हो रही है। विस्तृत कार्य योजना विभाग द्वारा बनाई गई और बिल्कुल ये अलग टाइप का होगा, बिल्कुल सभी विद्यालय से नाम ही मॉडल है, तो कहने का मतलब कि आदर्श, हर इंडिकेटर पर आदर्श होंगे और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी हम लोगों की पूरी कोशिश है कि ये विद्यालय बिल्कुल अलग टाइप के विद्यालय हो, जहाँ जाने पर लोगों को ये लगे कि सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर बने हैं और प्राइवेट विद्यालय से अच्छी शिक्षा दी जा रही है।
2: महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहकारी बैंक ने सकारात्मक प्रयास किया है। बीते दिनों जिले के करघर मोड़ के समीप स्थित सहकारी बैंक की नई पिंक शाखा का उद्घाटन किया गया। पिंक शाखा में सभी अधिकारी और कर्मचारी के तौर पर महिलाएं कार्यरत हैं, जिससे यह महिलाओं द्वारा संचालित प्रदेश की पहली सहकारी बैंक शाखा बन गई है। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिले के विभिन्न पंचायतों में 19 मई से सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि हर महीने के 2 मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए मई और जून माह का विस्तृत शेड्यूल जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके तहत 19 मई, 2 जून और 16 जून को जिले के 18-18 पंचायतों में वरीय अधिकारियों की देखरेख में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में राजस्व अंचल, प्रखंड, पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जिला मुख्यालय सासाराम स्थित सदर अस्पताल में चल रही एक सकारात्मक पहल मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके तहत मरीजों को इलाज और दवाओं के साथ साथ दीदी की रसोई के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था से मरीजों को स्वच्छ, संतुलित और पौष्टिक आहार मिल रहा है। इसका सबसे अधिक लाभ आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को हो रहा है, जिन्हें अब इलाज के साथ साथ भोजन की भी चिंता नहीं करनी पड़ रही है। बीते दिनों समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में सासाराम और डेहरी क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर मास्टर प्लान 2045 के ड्राफ्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उदिता सिंह ने की, जिसमें जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभाग के अधिकारी शामिल हुए। ड्राफ्ट में शहर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सासाराम और डेहरी को ट्विन सिटी के रूप में विकसित करने की अवधारणा पर भी चर्चा हुई। बीते दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सका। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया। इसको लेकर रोहतास में एमएलसी निवेदिता सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिले में धिकार यात्रा निकालकर

0: विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।
1: अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:51 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों के इस कार्यक्रम ई मनपसंद के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार और मातृ दिवस की आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। श्रोताओं, हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो चलिए आपके इस इंतज़ार की घड़ी को हम अभी करते हैं ख़त्म और शुरू करते हैं फरमाइशी गीतों का सिलसिला। कार्यक्रम का आगाज़ हम करते हैं इस खूबसूरत गीत से। फिल्म का नाम है जानवर, आवाज़ें अलका याग्निक और सुनिधि चौहान की, शब्द हैं समीर के और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद, फारूक फूलवाले, सैयद खलील, मुबीन भाई, मोहम्मद यासीन, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, और सारिमपुर बक्सर से इस गीत को सुनना चाहते हैं राज एसडी अंसारी और आत्मा खातून अंसारी। तो आप सबों की फरमाइश पर पेश है यह खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम है जानवर, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सुनिधि चौहान के।

श्रोताओं, ये मनपसंद कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, अलका याग्निक और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जानवर, गीत थे समीर के और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म भाभी से, गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, शब्दों में पिरोया है राजेंद्र किशन ने और संगीत निर्देशन है चित्र गुप्त का। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से, कारी रायकारी मीना।

गारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस उर्फ डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रवीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कुवात बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म में भाभी का यह गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द थे राजेंद्र किशन के और संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म में राजा और रंग का यह बेहतरीन गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। यह एक माँ की ममता पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि पूरे जीवन की सबसे बड़ी भावना है। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है। वैसे तो माँ के लिए आभार व्यक्त करने के लिए हर दिन होता है, लेकिन हर साल मई में माँ के सम्मान के लिए मदर्स डे का यानी मातृ दिवस का आयोजन किया जाता है। 10 मई को यह मनाया जाता है। यह ऐसा खास अवसर होता है जब हम अपनी माँ के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। इस दिन बच्चों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो अपनी माँ के त्याग, प्रेम और उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान दे। वैसे तो माँ बाप की सेवा करना हर इंसान का और हर बालक का यह परम कर्तव्य होता है। यह दिन माँ के प्रति सम्मान, प्रेम और आभार व्यक्त करने के लिए होता है। आज मदर्स डे है। आप सभी श्रोताओं को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामना। और आइए एक गीत हम समर्पित करते हैं माताओं के नाम, और इसे पसंद करने वाले आप सभी हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीना देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राकेश, राजेश, ऋषिता। बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने आज इस फिल्म के इस गीत की फरमाइश हमसे की है। फिल्म का नाम है राजा और रंग के, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल हैं राजेंद्र किशन के और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ईमेल करने वाले और भी श्रोता हैं मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यसफ अब्बासी, सिकंदर राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, राजा और रंग के इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है नरहन एस्टेट समस्तीपुर बिहार से नूतन मिश्रा, ललन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित, नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर, इस गीत को पसंद करने वाले अन्य पसंदकर्ता हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, परमिला श्याम कुंवर, नटखट आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी।

श्रोताओं, इसे बेहतरीन गीत को सुनने के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने हमें ईमेल किया था। फिल्म का नाम था राजा औरंग की आवाज़ें लता मंगेशकर की, शब्द थे राजेंद्र किशन के और संगीत थे, निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। ई मनपसंद कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आइए सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का फिल्म का यह बेहतरीन गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की है, शब्द हैं प्रकाश मेहरा के और संगीत है कल्याण जी आनंद जी के। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुरेन सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, और कालका से सुपचंद्र बजाज, साहिल बजाज और भिट्टा बजाज, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम ई मनपसंद में अभी आपने सुना फिल्म खलनायक का यह गीत। आवाज़ थी जगजीत सिंह और साथियों की, आनंद बख्शी साहब के शब्द थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी थे मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, साबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला जो नगमा हम सुनवाने जा रहे हैं उसे पसंद किया है गणनौखा लालगंज रोहतास बिहार से राज किशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान, आर के चौहान और ग्राम खरवत गणनौखा से मोती माला जी और वीरेंद्र पासवान, ओम रेडियो श्रोता संघ कॉलोनी नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़ और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठोरिया, उमाकांति कठोरिया, कमलेश कठोरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीतामुनि देवी, जयराम विंद और वीरेंद्र पांडे। आवाज़ें हेमलता की रविंद्र जैन के संगीत हैं और गीत हैं रविंद्र जैन के।

कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म प्रेम रोग से हमने लिया है। लता मंगेशकर की आवाज़ संतोष आनंद के शब्द हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, बोहड़गाछी से पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और

तो श्रोताओं, लता मंगेशकर द्वारा गाए इसी गीत के साथ है फरमाइशी गीतों का यह सिलसिला अब यहीं संपन्न होता है। ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। आज का यह गीतों भरा सफ़र आपने तय किया अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कल यानी कि अगले एपिसोड में हम श्रोताओं की फरमाइशी गीतों के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग

0: पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग

0: सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर

0: बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। पहला भोजपुरी लोकगीत आइए सुनते हैं बालेश्वर प्रसाद और साथियों के स्वर में।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: लोकधारा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं देशभक्ति लोकगीत। आवाज हैं बालेश्वर प्रसाद और साथियों की।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:00 बजकर

मिनट हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है गज़लों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम का पहला गज़ल हमने लिया है अनूप जालोटा की आवाज़ में। एल्बम का नाम है कशिश।

कार्यक्रम का पहला गज़ल अभी आपने सुना अनूप जालोटा की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गज़ल लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में।

0: भूपिंदर सिंह द्वारा गाए इसी गज़ल के साथ है गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो के घड़ी में अब थोड़ी देर में रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: पिया मिलन को जाना

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

0: जा।
1: पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

0: आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।
1: मैं

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: छाया गीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। स्वतः हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग का। रसरंग कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है एल्बम अपने मिलन का जतन कर सजना से। पूर्णिमा देवात की आवाज़ है, गोविंद भत्री ने इसे लिखा है और संगीत दिया है गोविंद भत्री ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला एल्बम सॉन्ग आपने अभी सुना पूर्णिमा देवात की आवाज़ में। गीत और संगीत थे गोविंद भत्री के। कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना हमने लिया है और प्यार करना है से। आवाज़ें हैं नेहा कक्कर और गुरु रंधावा की। सईद कादरी के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है सचेत परंपरा के।

रसरंग कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना नेहा कक्कर और गुरु रंधावा की आवाज़ों में और प्यार करना है एल्बम का यह खूबसूरत गाना। कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं परंपरा टंडन की आवाज़ में छोड़ देंगे एल्बम का यह खूबसूरत गीत। योगेश दुबे ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है सचेत परंपरा ने।

रसरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना परंपरा टंडन की आवाज़ में यह खूबसूरत एल्बम गाना, जिसे लिखा था योगेश दुबे ने और संगीत निर्देशन था सचेत परंपरा के। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। रसरंग कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी आप सुन रहे थे संदेश रसरंग कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है राहुल जैन की आवाज़ में। एल्बम का नाम है दिल को मेरे। वंदना खंडेलवाल ने इसे एल्बम गाने को लिखा है, राहुल जैन ने इसे संगीत से सजाया है।

दिल को मेरे। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने इस एल्बम का यह गाना सुना। आवाज़ थी राहुल जैन की। वंदना खंडेलवाल ने इस गीत को लिखा था, राहुल जैन ने इसे संगीत से सजाया था। रसरंग कार्यक्रम का अगला और आखिरी पेशकश एल्बम तन्हाई का अगम से। आवाज़ें हैं ब्रज शर्वरी और उत्कर्ष शर्मा की। सिया सचदेव ने इसे शब्दों में पिरोया है और संगीत निर्देशन है गोविंद भत्री के।

तो श्रोताओं, इसी एल्बम गाने के साथ है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मन की आंखें से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। साहिर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम चित्रपट तराने का पहला गीत आपने सुना, जिसे हमने फिल्म में मन की आंखें से लिया था। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, शब्द थे साहिर के और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला नगमा आइए सुनते हैं फिल्म हीरो से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मनहार की। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है।

चित्रपट तराने कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दयावान से आवाजें हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की। अजीज काशी के शब्द हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

चित्रपट तराने कार्यक्रम का अगला और आखिरी पेशकश फिल्म इम्तिहान से आवाज़ किशोर कुमार की है। मजरूर सुल्तानपुरी के गीत हैं और संगीत हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

तो श्रोताओं, किशोर कुमार द्वारा गाए इसी गीत के साथ थे चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हो चुके हैं। अब श्रोताओं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 से। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस पाठ संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:20 पर आप आनंद ले सकेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी का। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार विविध भारती के मुंबई केंद्र से। 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार। 11:10 पर आप सुनेंगे सोमनाथ अमृत वर्षा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन हम प्रस्तुत करेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्मों गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट तराने। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 9 से 13 मई के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75% तथा दोपहर में 30-35% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलने की संभावना है। कल जिले के 1 या 2 स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि या 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे मौसम पूर्वानुमान पर। FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:00 बजेंगे। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है

0: हमने शत प्रतिशत एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।